0: मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। यह एक पुरानी कहावत है जो हमें बताती है कि सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुनने से हमें जानकारी मिलती है लेकिन वह जल्दी ही भूल जाती है। सुनने से हमें नए विचारों और जानकारी का पता चलता है लेकिन उसे याद रखने के लिए हमें उसे दोहराना होता है। देखने से हमें जानकारी याद रहती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें उसे कैप्चर कर लेती हैं और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उसे वास्तव में समझ जाते हैं। अभ्यास करने से हमें अनुभव मिलता है और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुनता हूँ और
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2026 जुलाई महीने का दिन है, ट्यूजडे, और तारीख है 14। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरी प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक ती तंगजंग और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो बने रहे मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरूआत करते हैं।

मंच पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने डायलेक्ट न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायलेक्ट न्यूज़।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

0: 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारतेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचा समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट गए हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मोन

हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, तो इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है।

दोस्तों आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों सुबह की शुरुआत सिर्फ ताजा खबरों से नहीं, एक ताजा और तंदुरुस्त शरीर और मन से भी होता है। आप सभी को एक खूबसूरत सुनहरे सुबह का नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सबसे ताजा तरीन, आपको ऊर्जा से भर देने वाला खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह का ये वक्त इतना बड़ा अनमोल होता है। पुराने लोग कह गए हैं कि जो सोया वो खोया, और जो इस सुनहरी धूप में जाग गया उसने जिंदगी का असली सुकून पा लिया। हर नई सुबह हमें एक मौका देती है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपनी सेहत को एक नया मोड़ देने का। लेकिन अक्सर हम इस बागदौड़ बड़ी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, और वो है हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी सेहत। इसीलिए अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजें शामिल करके एकदम फिट और हमेशा मुस्कुराते रह सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत बातचीत का आगाज करते हैं एक बेहद ही प्यारे और रूहानी गाने के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। आज हम अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे योगा के कुछ ऐसे आसनों से जो हमारी रूटीन में आम नहीं है पर फायदेमंद बहुत है। सबसे पहले बात करते हैं गरुदासना की। इस आसन को करने से हमारे शरीर का बैलेंस यानी संतुलन बहुत बेहतर होता है। अगर आप दिन भर लैपटॉप पर काम करते हैं या खड़े रहते हैं तो ये आपके शोल्डर्स और अपर बैक की जकड़न को बिल्कुल खोल देता है। इसके साथ ही एक और बेहतरीन योगा आसन है नतराजासना। ये आपके शरीर को एक सुंदर पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। दिमाग को शांत करने के लिए ये एक जादू की तरह काम करता है। और तीसरा है मरजारियासना। ये हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के लिए वरदान है। अगर आपको बैक पेन रहता है तो सुबह 2 मिनट इस स्ट्रेच को करने से आपका पूरा शरीर खुल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। चलिए इन योगा टिप्स को ध्यान में रखिए। तब तक सुनते हैं सुबह का ये दूसरा खूबसूरत नगमा।

दरअसल ठंडी हवा और ये बेहद प्यारा गाना, सुबह का मजा ही कुछ और है ना। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। योगा के बाद अब बढ़ते हैं थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दे और आपको दिन भर फ्रेश रखे। अगर आप रोज रोज वही वॉक या जॉगिंग करके बोर हो गए हो, तो आज से अपनी रूटीन में रस्सी कूदना शामिल कीजिए। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है, जो कम वक्त में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और आपके दिल को मजबूत बनाती है। इसके अलावा अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो सुबह सिर्फ 2 से 3 मिनट हाई नीज एक्सरसाइज कीजिए, जहां आपको एक ही जगह खड़े होकर अपने घुटनों को चेस्ट तक ऊपर लाना होता है। ये आपके कोर और लेग्स को बहुत स्ट्रांग बना देगी। और हाँ दोस्तों, कोर स्ट्रेंथ के लिए डेली कम से कम 1 मिनट का प्लैंक होल्ड जरूर करें। ये आपकी पीठ के मसल्स को टाइट पेट के मसल्स को टाइट करता है और आपकी बॉडी पोस्चर को एकदम परफेक्ट बनाता है। तो चलिए, एक्सरसाइज तो हो गई, आप बढ़ते हैं आगे। पर पहले सुनते हैं इस सफर का अगला गाना।

0: तो सब वक्त है आज की सबसे जरूरी हेल्थ टिप्स का जो सीधे आपके किचन और लाइफस्टाइल से जुड़ी है। सुबह उठते ही बिना कुछ खाए कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। यह आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो लेकर आता है। सुबह की पहली धूप में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर बैठे। इससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और आपके मूड भी फ्रेश रखेगा। एक और पुराना पर असरदार नुस्खा, रात को तांबे के बर्तन में पानी रख के और सुबह उठकर उसे पिए। यह आपके डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को बहुत बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी जानकर करुण एफ एम 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे आपातकालीन भाषा में समाचार।
1: ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का कार्यक्रम।

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सुका सुधरला दौला तर लुकोला मदो। इंडियाला जापान नी रोम पिंजन डिफेंस पॉलिसी डायलॉग मीटिंग दुकू मी बुजो जापान का टोक्यो गांधा हो मुसला मत हो। इंडिया का डेलीगेशन मीटिंग दुकू पता मी डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इंगला मत हो। जापान का दुकू पता मी इंटरनेशनल अफेयर्स पक्का डिफेंस का वाइस मिनिस्टर कानो कोजी इंगला मत हो। सका डिफेंस पॉलिसी डायलॉग मीटिंग दुकू मुस्को हो गंडाने का आयासा को हो। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन साइबर सिक्योरिटी स्पेस ला हुए दरी का दिगोमी आय लिम्बो पबासदुपा तालुमोसला मत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दुगमार कमदुक बुजो गवर्नर केटी परनायक मी ईटानगर का लोक भवन हो कपाला मत हो। कमदुक मी स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल पा सिपु आईमा पा नीति पा अपॉइंट मला मत हो। गवर्नर कमदुक मी मोक दली हो के हेम्पुई मी बिला हो मोका ड्यूटी मी अनो आया खांखांदराम पा लिनेदो लाते लोला मत हो। गवर्नर केस दोन अतामी म्योद हो दिमेलुमे बिसाको हो हिंदू मुदो पा लोला मत। एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पोस्ट मी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होक प्रमोशन चादोपा का रिक्रूटमेंट रूल मुदोपा का मीटिंग दुकु कोने मी बुजो चेयरमैन पा दुगला मत। स्पेयर हेड डिवीजन का स्पेयर हेड गनर्स अता है 22 APNCC बटालियन का लंगे हेला निखाए पा NCC कैडेट अता मी बेसिक US ला CUS ट्रेनिंग प्रोग्राम मी मुगला मत हो। सका ट्रेनिंग प्रोग्राम मी अलोलोने मी 22 APNCC बटालियन पासीघाट हो मुगला हो। हरापा अलोलोने मी सिगर मिलिट्री स्टेशन हो मुगला मत हो। सका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ड्रोन टेक्नोलॉजी ला US हो CUS मीका मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन हो का रोल दोनों मी लुको गला मत। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर दली होक वेस्ट कमिंग ईस्ट कमिंग कुरुंग के में लोअर सुबनसरी पके के संग पपुमपारे वेस्ट सियांग अंजो लोहित नमसाई चंगलांग ला तिराप डिस्ट्रिक्ट आता हो। आज आरो मुताला ताचेलो ने गंदासको आता हो आनो उरो पा मुदो होला मने दो हला येलो अलर्ट मी बिकोला मुदो। अलियांगो है ला रोंख ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 मी का कोलंबिया हो का सका पोलो का लोपेन आलो होक ला लोजाने आलोलिए हो मुग को हो। इंडिया का यंग वे स्टूडेंट्स आता हे गोल्ड मेडल मी लाला मत हो। इंडिया हे रूसिया चाइना कजिस्तान साउथ कोरिया ला ताइवान गंदा आता आगे हो पास पोजिशन मी लाइन ला मत हो। सका फिजिक्स ओलंपियाड हो पिन खांगेला कानवे कंट्री आता होक लाहेला पिन खांगेला आको स्टूडेंट्स आता हे पार्टिसिपेट मोबोला मत हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया का टीम आता मी हिपिपुई मी मोक दली होक बिकोला मदो। फीफा वर्ल्ड कप हो पार्स सेमीफाइनल मैच मी फ्रांस ला स्पेन नी वेडनेसडे आलो हो तुकासला मुकिंदो हो। सेकेंड सेमीफाइनल मैच मी इंग्लैंड ला अर्जेंटीना नी थर्सडे आलो हो तुकासला मुकिंदो। सरो का पुलु कसन हम कने सी आकाशवाणी इतानर सिसी तनु विषय मी मिलिम बुली कप्योपा ग्यादिरंडा का ngni दुको मिला का बिस्नेमी तपाकेंदो।

नमस्कार दोस्तों, आप बताने दैलेख में खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और अब वक्त हो चला है हमारे सबसे ज्ञानवर्धक और ताजा तरीन सेगमेंट का, जिसका नाम है मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। आप सभी को इस खूबसूरत और सुनहरी सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर।

कहते हैं ना कि हर दिन अपने साथ एक नई सीख और नए सबक लेकर आता है, और जब हम अपने दिन की शुरुआत पूरी दुनिया के ज्ञान और अपने राज्य के ताजा खबरों के साथ करते हैं तो हमारा हर कदम सही दिशा में उठता है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे आज ही के दिन की उस इतिहास की जिन्होंने दुनिया और भारत को बदल कर रख दिया, और साथ ही नजर डालेंगे हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। तो चलिए ज्ञान और इन्फॉर्मेशन के इस सफर को शुरू करने से पहले अपने मूड को ताजा करते हैं इस बेहतरीन और खूबसूरत गीत के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री के पन्नों की तरफ और देखते हैं कि आज 14 जुलाई को दुनिया में क्या बड़ा हुआ था। आज ही के दिन 1789 में पूरे फ्रांस और ग्लोबल हिस्ट्री में बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन पेरिस में आक्रोशित जनता ने बैस्टिल के किले पर हमला किया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत बना। यह दिन पूरे वर्ल्ड में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की मिसाल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में आज ही के दिन 1981 में नासा के वोयाजर 1 स्पेस प्रोब ने सैटर्न के रिंग्स और उसके मून टाइटन के बेहद साफ और हैरान कर देने वाले पिक्चर्स धरती पर भेजी थी, जिसने प्लैनेट रिसर्च को एक नया रुख दिया। आज ही के दिन 2015 में नासा ने न्यू होराइजंस स्पेस क्राफ्ट ने इतिहास रचते हुए प्लूटो के सबसे करीब से गुजरने का कारनामा किया था। इस मिशन ने इंसानियत को पहली बार इस दूर दराज के वेरिफाइल ड्वार्फ प्लैनेट की खूबसूरत और डिटेल तस्वीरें दी थी। अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट एच गोडार्ड ने आज ही के दिन 1914 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट के लिए अपना पहला पैटेंट फाइल किया था। उनका ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर मॉडर्न स्पेस रॉकेट 3 और चांद पर जाने वाले मिशन की सबसे बड़ी बुनियाद बना। दुनिया का इतिहास तो सच में बेहद दिलचस्प है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा संगीत का मजा लेते हैं, फिर जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। दुनिया के बाद अब नजर डालते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री पर कि आज के दिन भारत में क्या ऐसी बातें हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। भारत में लगभग 163 साल तक चली आइकॉनिक टेलीग्राम सर्विस को आज ही के दिन साल 2013 में आखिरी बार चलाया गया और उसके बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में यह एक पूरे संगीतमय और जज्बाती दौर का अंत था। आज ही के दिन 2023 में इसरो ने श्री हरिकोटा से अपने एम्बिशियस मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इस मिशन ने आगे चलकर चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके पूरे विश्व में भारत का तिरंगा बुलंद किया था। देश की मिट्टी की हर एक कहानी अनोखी है। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे अरुणाचल प्रदेश लोकल न्यूज सेगमेंट का। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, फ्रेश फ्लड्स लैंडस्लाइड डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश की कई डिस्ट्रिक्ट में लगातार हो रही बारिश के कारण ताजा बाढ़ और लैंडस्लाइड ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में रोड्स ब्लॉक हो चुकी है, कनेक्टिविटी टूट गई है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑप्स में जुटा हुआ है। असम पुलिस अरेस्ट लैंड राइट्स एक्टिविस्ट प्रणव टोले नेरो डिमांड्स इमीडिएट रिलीज। एक बड़ी रीजनल खबर में असम पुलिस ने लैंड राइट्स एक्टिविस्ट प्रणव टोले को अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट के बाद नोटिस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी कड़ी निंदा की है और उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत रिहा करने की मांग की है। आपसू 6 स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज फ्रॉम सेंटर फॉर फ्लड डिजास्टर और आपसू ने स्टेट ने में बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मांग की है। यूनियन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ठीक करना और प्रभावित लोगों को मदद के लिए सेंट्रल फंडिंग बेहद जरूरी है। दोस्तों हमारी इस जानकारी और खबरों के से बड़ा मॉर्निंग सेगमेंट का आज का सफर बस यही तक था, लेकिन गानों और बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जाने से पहले आपको एक खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रही हूं। तो यह आकाशवाणी का ईटानगर कार्यालय एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी फरनाइक ने मयो ईटानगर के लोक भवन लो अरुणाचल प्रदेश लो एडिशनल एडवोकेट जनरल दुगमार कामदुक कार्यसुलारी को बोला फालिंग दुखो सी दुगमार कामदुक ने स्टेट लो एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कुनाम कोचिंग कोटेसी विजिट अनाम गो स्टेट लो गवर्नर ने कार्यसुला रिगदु कुनेला विफा दुखो सो आलो लो गवर्नर ने भी काम दुग रिनाम संगनाम गा तेपा का पादुने दुखुने होला एडिशनल एडवोकेट जनरल फोर्स सम आला रोंग बा रिगदाग तकेला विफा गन कुबा अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना मयो मिथिंग दोंगपांगोनी दोंगबाम दोकुला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पोस्ट बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अरालोक प्रमोशन जिचा दुखुब रिक्रूटमेंट रूल्स मलिन तकला मलिन मोलाखुला रिगनिखुबला बेफा दुखु सो दोंगपांगसु एजुकेशन डिपार्टमेंट लोरे दोंगसंगपांग अलोरोंब रिगसंग दुखुब प्रमोशन nga kala alorong ba melin taku kala mifagan ku ba monde arukam chulo apar subansari district ge dapori jo town lo lo lo diliji colony loka nido nga chalabo ola renam lakhung ba subirach ke subisrek nga telak fakula mifaduko so nam lungulala gu ba नाम नासुंग गुदा ओक इंफ्रास्ट्रक्चर कई अलग निका सरक गगन खुबला तेरेगन खुबला मेफा दुखु सो अरालो सो ग सुबिद्रचित सुबिसरक तेलको एरिया सो अकांगु लॉस फयातो हम काका दुखुबा असेसमेंट गा district administration nga marapgan kubela mifalin duko FIFA World Cup football ga quarter final nga limigay kula semi final match nga liksurap tega duko so France nga Spain nga liksurap tega duko ok England nga la Argentina nga liksurap tega duko so ga FIFA World Cup final match July follow. So July follow ga alu chamina na tarakni New Jersey Stadium lo likshuta ga dukula mepada duku. Meteorological Center Itanagar loko mepa kunam nga West coming, East coming, Kurungku me Lower Subansiri Pake Kesang, Pafumpare, West Siang, Anjao, Luhit, Namsai, Changlang, Okatirab District lo nye dong achalaba holikte do la yellow alert ku weather broadcast lo ka katam pakula mifadu ku. So district ga mod kaguna lo dogum doryak ang takla nye dong achalaba holikte do la mifadu ku. Saru ga tagin gamba yung bintapsang ka herbo.

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन दायरेक में समाचार और अब वक्त हो चला है एक ऐसी नगरी में कदम रखने का जहां सुर कभी बूढ़े नहीं होते और यादें हमेशा ताजा रहती है। आप सभी को इस खूबसूरत और सुनहरी सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के सबसे प्यारे और सदाबहार सेगमेंट में जिसका नाम है सदाबहार। दोस्तों इस सेगमेंट में हम सुनेंगे गुजरे जमाने के वो सुनहरे गीत

दिल पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन पुराने नगमों की शुरुआत करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आज हमारे राज्य का मौसम क्या करवट लेने वाला है। आईएमडी अरुणाचल प्रदेश के मुताबिक आज पूरे स्टेट में बादल छाए रहेंगे और लगातार बारिश होने की पूरी संभावना है। तो मौसम के इस बदलते रंग के साथ चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये एवरग्रीन सुनहरी नगमा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर आपका अपना शो सदाबहार। चलिए अब रुक करते हैं हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के ओवरऑल डिटेल वेदर रिपोर्ट की तरफ। अगर आप आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ताजा रिपोर्ट ध्यान से सुनिएगा। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक आज पूरे अरुणाचल प्रदेश में मौसम काफी नरम और भारी बारिश वाला बना रहेगा। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में फेयरली वाइड स्प्रेड यानी बहुत बड़े पैमाने पर रेन और थंडर शावर होने का अनुमान है। इसके साथ ही आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आइसोलेटेड प्लेसेस यानी राज्य के कुछ दूर दराज के इलाकों में तेज थंडरस्टॉर्म, बिजली खड़कने के साथ साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। हिली टेरेन और लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स में ट्रैवल करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हवा की रफ्तार राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की रहेगी और टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बना रहेगा। तो पूरे अरुणाचल के मौसम का हाल जानने के बाद चलिए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये दूसरा नगमा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों चलिए अब रुक करते हैं हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर के बिल्कुल डिटेल वेदर रिपोर्ट की तरफ। अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ रखना मत भूलिएगा। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक ईटानगर में आज क्लाउडी कंडीशन बनी हुई है और हल्के से मध्यम दौर की बारिश सुबह से ही शुरू हो चुकी है। ईटानगर का मैक्सिमम टेम्परेचर आज लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई यानी 95% से लेकर 97% तक रह सकती है, जिसके चलते थोड़ी उमस फील होगी। घंटे दर घंटे के फोरकास्ट पर नजर डाले तो दोपहर के दौर में शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज थंडरस्टॉर्म आने की 60% तक संभावना बनी हुई है। शाम और रात होते होते ही मौसम थोड़ा शांत होगा और दोबारा हल्के दौर की रिमझिम बारिश चलती रहेगी। तो दोस्तों रोड पर गाड़ी ध्यान से चलाइए और मौसम का मजा लेते हैं। चलिए इस हसीन सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं

दोस्तों सदाबहार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का सदाबहार पसंद आया होगा। ये आकाशवाणी चैनल का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक

0: आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक

0: की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's tests. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments.

0: दोस्तों, दिल्ली और शिलांग से खबरों की सुर्खियों का सफर अब होता है यहीं पर खत्म और अब वक्त हो चला है हमारे सबसे ज्ञानवर्धक और इंटरैक्टिव सेगमेंट का, जिसे आप सभी का तेर सारा प्यार मिलता है। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आप सभी को इस बेहद खूबसूरत और प्यारे सुबह का नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजो और हर बार की तरह आज भी हेलो ईटानगर में हम बात करेंगे एक ऐसी जानकारी पर जो हमारी सोच के दायरे को थोड़ा और बड़ा करेगी। दोस्तों हमारा समाज अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर बनता है और हर एक इंसान की अपनी एक अनोखी पहचान होती है, एक ऐसी पहचान जो किसी छोटे से बॉक्स या लेबल में बंद नहीं हो सकती। आज 14 जुलाई है और आज पूरे विश्व में एक बेहद इम्पोर्टेंट डे मनाया जा रहा है। जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉन बाइनरी पीपल्स डे। इस दिन का इतिहास क्या है और इसका क्या मतलब है, ये सब हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन इस ज्ञान

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर प्रोग्राम हेलो ईटानगर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉन बाइनरी पीपल्स डे के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन बाइनरी का आखिर मतलब क्या होता है। आमतौर पर हम जेंडर को सिर्फ दो हिस्सों में देखते हैं, मेल या फीमेल, जिसे हम जेंडर बाइनरी कहते हैं। लेकिन नॉन बाइनरी एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ मैन या वुमेन के दायरे में फिट नहीं बैठती। वो इस स्पेक्ट्रम के बीच में हो सकते हैं, दोनों का मिक्स हो सकते हैं, या फिर खुद को किसी भी जेंडर से अलग महसूस कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है साल 2012 में। कटजे वन लून नाम के एक एक्टिविस्ट ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। उनका मकसद बड़ा साफ था, दुनिया भर के नॉन बाइनरी लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और उनके राइट्स के लिए आवाज उठाना। लेकिन इसके लिए 14 जुलाई की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प लॉजिक है दोस्तों। 14 जुलाई की डेट पूरी तरह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी 8 मार्च और इंटरनेशनल मेंस डे यानी 19 नवंबर के बिल्कुल बीच में आती है। ये चीज इस बात को सिंबलाइज करती है कि जेंडर सिर्फ दो किनारे नहीं है, बल्कि इन दोनों किनारों के बीच में भी एक पूरी खूबसूरत दुनिया बसती है। चलिए इस खूबसूरत समाज के साथ अब रुख करते हैं संगीत की तरफ और सुनते हैं आज का हमारा दूसरा बेहद मेलोडियस गीत।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप जुड़े हैं मेरे साथ प्रोग्राम हेलो ईटानगर में। दोस्तों, साल 2012 से शुरू हुआ ये सफर आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन भी पूरी तरह से ऑब्जर्व और सपोर्ट करता है। आज के दौर में दुनिया भर में नॉन बाइनरी लोग कई तरह के चैलेंजेस का सामना करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है लीगल रिकॉग्निशन की। मैक्सिमम कंट्रीज में लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिर्फ मेल या फीमेल का ऑप्शन होता है, जिसके चलते उनके पासपोर्ट या आईडी बनवाने में काफी परेशानी होती है। हालांकि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड और हमारे प्यारे भारत जैसे देश अब पासपोर्ट और ऑफिशियल फॉर्म्स फॉर नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी को स्पेस दे रहे हैं। इस दिन का सबसे बड़ा मैसेज है रिस्पेक्ट और इंक्लूजन। हम एक बेहतरीन एलाई कैसे बन सकते हैं? बेहद सिंपल है। जब भी हम किसी से मिले तो उनके प्रोनाउंस जैसे ही, हिम, शी, हर या नॉन बाइनरी लोगों के लिए कॉमन यूज होने वाला दे, देम की रेस्पेक्ट करें। किसी के जेंडर का खुद से अंदाजा ना लगाए। एक समाज के रूप में हमारा फर्ज है कि हम उस शख्स को अपनाएं जो जैसा है, उसे वैसे ही सम्मान के साथ जीने का हक मिले। तो चलिए इस प्यारे से एजुकेशनल जानकारी की बात सुनते हैं सेगमेंट का तीसरा और आखिरी सुपरहिट कार्ड।

दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे इस जानकारी से भरे सेगमेंट हेलो ईटानगर का आज का सफर बस यही तक था। हमेशा याद रखिए, हर इंसान अनोखा है और हर एक की आइडेंटिटी की रेस्पेक्ट करना ही इंसानियत है। लेकिन गानों और बातों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला अभी तक चलता रहेगा। तो बस आज का हेलो ईटानगर में बस इतना ही। आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फूकोक द्वीप में पलट गई थी। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया।

0: अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families of the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy.

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। अब स्वागत है आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी कपशप में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज लेकर आई हूं बॉलीवुड और ओटीटी की बिल्कुल ताजा और गरम गरम खबरें जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोस्तों आज बहुत सारी बातें करनी है, वो थिएटर्स में चाहे वो थिएटर्स में दमाल 4 और अल्फा का हंगामा हो या ओटीटी पर ट्रेंडिंग शोज पर। पहले लेट्स सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों थिएटर्स में इस वक्त पैसा वसूल माहौल चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं बड़े थिएट्रिकल रिलीजेस के साथ। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है। जस्ट कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के बाद ऐसा कैचअप किया कि 3 दिनों में ही इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 92 करोड़ क्रॉस कर चुका है। क्रिटिक्स इसे एक डिसेंट फिल्मी फैमिली एंटरटेनर बोल रहा है और फैमिली ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड एक्शन थ्रिलर अल्फा को थिएटर्स में अब दूसरा हफ्ता चल रहा है। आलिया भट्ट और शार्वरी स्टेरर इस फिल्म में बॉबी डियोल विलन बने हैं और ऋतिक रोशन का एक माइंड ब्लोइंग कैमियो है। सोशल मीडिया पर इसके एक्शन सीक्वेंस की काफी तारीफ हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्वाइट अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों चलिए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों वैसे बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म काफी चर्चे में है हमारी हुमा कुरैशी की बेबी डो डाई डो। हुमा इसमें एक डेफ और म्यूट कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल प्ले कर रही है। डार्क कॉमेडी और न्योर क्राइम ट्रेलर का ये कॉम्बो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है क्योंकि ये हुमा के प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू भी था। वैसे आप क्या सोचते हैं इस हटके कंसेप्ट के बारे में, हमें जरूर बताइएगा। चलिए ये लीजिए आपका तीसरा गीत।

चलिए अब घर बैठे एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स ड्रॉप हुए हैं। राजकुमार हिरानी का जो सीरीज है प्रीतम पेड्रो, इस सीरीज के साथ अपना स्ट्रीमिंग डेब्यू किया है और उनके बेटे वीर हिरानी का भी ये डेब्यू है। इसमें अरशद वारसी एक ओल्ड स्कूल मुंबई कॉप के रोल में है जो अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस से एक बड़े साइबर क्रिमिनल को पकड़ने निकले हैं, जिसे प्ले किया है विक्रांत मासे ने। राजकुमार हिरानी का सिग्नेचर ह्यूमर और हाई स्टेक साइबर इन्वेस्टिगेशन का कॉम्बो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वैसे अरशद वारसी और विक्रांत मासे की जोड़ी पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। आप सुनते हैं ये दूसरा गाना।

दोस्तों ओटीटी पर अगला बड़ा धमाका है एक पावर हाउस कोर्टरूम ड्रामा का। सनी देओल और अक्षय खन्ना पूरे 29 साल बाद यानी बॉर्डर के बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। उनके साथ दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शो में भी है। कहानी एक सेलिब्रेटेड अटॉर्नी की है जिसे जबरदस्ती एक एक्यूज मर्डर का के केस लड़ना पड़ता है। हर एक सीन में सनी और अक्षय की एक्टिंग की टक्कर देखने लायक है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के डायलॉग्स ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर है। वैसे सनी देओल का कोर्टरूम ड्रामा आपको पसंद आया कि नहीं? सुनिए ये हमारा अगला गीत।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, अगर आपको कुछ लाइट हार्टेड और थोड़ा हटके देखना है तो नेटफ्लिक्स पर एक और ऑप्शन है। संदीप किशन और मिथिला पालकर की ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज एक ऐसी अनलकी स्कूल टीचर की है जो खुद वर्जिन है, पर उसे एक रिमोट विलेज में सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का

चलिए आने वाले बड़े धमाकों पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एमी नॉमिनेटेड एंटोलॉजी सीरीज लस स्टोरीज का तीसरा भाग आ रहा है और इस बार इसको डायरेक्ट करेंगे किरण राव, विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बात्रा और विशाल भारद्वाज जैसे लेकर अभी से रेडिट और ट्विटर पर काफी हाइप बन गई है। नेटफ्लिक्स पर इंडियन एयरफोर्स के एक हिस्टोरिक हाई अल्टीट्यूड मिशन पर एक मेगा बजट वेब सीरीज ग्रीन लाइट हो चुकी है जिसके स्केल काफी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड ओटीटी के बिल्कुल फ्रेश और अप टू डेट गपशप। थिएटर्स में धमाल फोर चल रही है और ओटीटी पर प्रीतम और पेड्रो और एका का जलवा है। आप अपना वीकेंड प्लान सेट कीजिए, मैं चलती हूँ, आपको छोड़ जाती हूँ हमारे आज के आखिरी ट्रैक के साथ, स्टे फिल्मी स्टे हैवी हैप्पी। और दोस्तों इसके इस कार्यक्रम के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, तब तक के लिए आप इस गीत का लुफ्त उठाइएगा।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय

0: राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nina Arakel. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: It is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President, Vice President and Prime Minister have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. The event aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy, dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. In Odisha, the sacred Navajovana Darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after the fortnight-long Anusara period.

0: दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और अब वक्त हो चला है एक हमारा आखिरी सेगमेंट का, जहां माइक हमारा होता है पर मर्जी पूरी तरह आपकी होती है। जी हां, शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा चहेता शो रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: आप सभी को एक बार फिर से होस्ट के प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, ये वो वक्त है जहां हम आपके मैसेजेस और आपके पसंद के गीतों को लेकर सीधे स्टूडियो से लाइव ही जुड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आपके सुनहरे नगमों का ये खूबसूरत कारवा। दोस्तों, कल वक्त थोड़ा कम था इसीलिए कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट बाकी रह गई थी, तो सबसे पहले उन्हीं अधूरे वादों को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है हमारे बेहद प्यारे लिसनर जोगेंद्र रोंगपी सोनाली और दोरम किरी ने, जो हमें सुन रहे हैं सरिहाजन कार्बी आंगलोंग से। इन सभी दोस्तों ने ये सुहाना गीत अपने सभी प्यारे दोस्तों को डेडिकेट किया है। दोस्तों की दोस्ती के नाम सुनिए लता जी की आवाज में ये सुनहरा नगमा।

दोस्तों चलते हैं हमारी अगली पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरफ। मौसम की इस रिमझिम के बीच ये रिक्वेस्ट आई है हमारे डेली लिसनर नानी तागो की तरफ से, जो हमें लगातार सुनते हैं निरजुले से। नानी जी, आपकी पसंद का ये आइकॉनिक गीत पेश है आपके लिए।

0: से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अगला मैसेज जो आया है वो आया था कल, वो बहुत ही खास है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है रिचो ने पाकी के संग से। रिचो के इस मैसेज और उनके नाम को देखकर लगता है कि वो हमारे इस परिवार से नए नए जुड़े हैं। रिचो, आकाशवाणी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हम आपकी इस चॉइस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इतना पुराना और दीप गाना चुनकर आपने पहली बार में स्टूडियो का दिल जीत लिया है। वेलकम टू द फैमिली। पेश है आपका ये नगमा।

वेलकम बैक दोस्तों। चलिए एक कल की आखिरी पेंडिंग रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। ये रिक्वेस्ट हमें आई है बॉर्डर के उस पार से, यानी मून की तरफ, यानी मून की तरफ से, जो हमें सुन रहे हैं असम विश्वनाथ चारियाली से। जुविंदा की दीवानों के लिए पेश है ये खूबसूरत ट्रैक।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, और अब कल का रिक्वेस्ट पूरा करने के बाद वक्त हो चला है आज के ताजा मैसेजेस कैपिटल।

खोलने का और आज की शुरुआत ही एक बेहद पावरफुल और इंस्पायरिंग गाने के साथ हो रही है। आज का पहला गाना है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये शानदार रिक्वेस्ट हमें भेजी है गुमेमई बागरा जी ने हिगी बागरा से। गुमे जी, आपकी चॉइस के लिए स्टूडियो से आपको एक बड़ा सा सल्यूट। आपने जो ये गाना चुना है ना, ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि जिंदगी के मुश्किल हालातों से लड़ने का एक बेहद खूबसूरत हौसला है। इस बारिश और मुश्किल दौर में ये गाना हम सभी को उम्मीद देता है कि जंग चाहे कोई भी हो, जीत हमारी ही होगी। बेहद शानदार चॉइस है आपकी। तो गुमे जी की पसंद पर और ही की बागरा के सभी लिसनर के लिए सुनिए ये प्रेरणादायक गीत।

0: Pare Hydropower Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the riverbed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in riverbanks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the riverbanks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर आपका अपना शो रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों अगला गाना है देवा देवा फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन से। ये एनर्जेटिक और भोलेनाथ की भक्ति से बड़ा गाना हमें रिक्वेस्ट किया है हमारे बेहद प्यारे लिसनर हर्षित गोस्वामी ने, जो हमें सुन रहे हैं बोघाघाट असम से। हर्षित, इस खूबसूरत और डिवाइन सॉन्ग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरिजीत सिंह की आवाज और ये पॉजिटिव एनर्जी आप सीधे आपके लिए।

0: दोस्तों चलिए अब रुख करते हैं हमारी अगली बेहद प्यारी फरमाइश की तरफ जो कार्बी अंगलोंग से आई है। ये पुराना और बेहद हसीन गीत हमें रिक्वेस्ट किया है एक पूरे दोस्तों के ग्रुप ने। मैसेज लिखा है टेंसन क्रो, रोजमेरी, नीलिका अथुर और सरलो ने, जो हमें एक साथ सुन रहे हैं लंगंगसम कार्बी अंगलोंग से। आप सभी दोस्तों की इस खूबसूरत रेट्रो चॉइस पर पेश है लता मंगेशकर और अमित कुमार का ये एवरग्रीन सॉन्ग।
1: पापा के बर्थडे

और इसी के साथ दोस्तों हमारे पास इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। जिन दोस्तों के खत आज छूट गए हैं उनसे मैं दिल से माफी चाहती हूँ। प्लीज आप फिर से आप अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। मेरे आज का सफर इस सेगमेंट में बस यही तक था। आप सभी से खूबसूरत इस खूबसूरत मौसम का मजा लीजिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। दोस्तों ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा यह संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग और तकनीकी अभियंता गोलोकालो। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दंपक के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे आजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से चाहूं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2,00,000 रूपये और घायलों को 50-50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमरीका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शताब्दी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे याजू जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी स्टूडियो के घड़ी में 11:11 हो रहे हैं। इसके साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे याजू जी के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी अपने आरजे साथी दंपा के साथ। आपको बता दूं कि हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक गैर अर्थ तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। तब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। गीत के बोल है और क्या, और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत राज फिल्म से, आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत लाइफ इन मेट्रो फिल्म से। गीत के बोल है इन दिनों और इस गीत को गाया है प्रीतम चक्रवर्ती और सोहम चक्रवर्ती ने।

0: After the reflection comes release. Dog Days Are Over is a celebration of leaving difficult times behind and embracing the freedom that comes with a fresh start. Dog Days Are Over by Florence the Machine.
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडी। से आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरम रुमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलरम रुमध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाके बंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the four-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of Bharat Tex 2026 is witnessing participation of around 7,000 buyers and over 20,000 textile products. International exhibitors from 14 countries are participating in the event. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
5: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
4: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group PDG in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building and vocational training. The death toll from a huge fire in a Bangkok music bar has increased to 30. Bangkok city officials today said more than 70 people remain hospitalized, with 24 of them in critical condition. Police said an investigation into the cause of the fire and whether the bar was following safety regulations is ongoing. It added that most of the people who were killed were found trapped in windowless bathrooms where they may have sought to escape the flames. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's central command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semifinal at Dallas Stadium in Texas, U.S. tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian men's cricket team will take on hosts England in the first one-day international of the three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम गजल। दोस्तों कार्यक्रम गजल में आपको सुना रहे हैं पहला गजल पापोन की आवाज में, आज जाने की जिद ना करो।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गजल में, और अब आपके लिए पेश है एक गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इसके साथ ही कार्यक्रम गजल यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का मेहमान।
1: नमस्कार, 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम आपकी सेवा में हाजिर है कार्यक्रम आज के मेहमान के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे। और श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद है हमारे अरुणाचल के एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही माउंटेनियर श्री तका तमुजी।

0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। श्री तका तामुज सर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है 2018 में, और इसी के साथ साथ ही इज ऑल्सो रेसिपियंट ऑफ स्टेट गोल्ड मेडल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर N-32 प्लेन क्रैश ड्यूरिंग जून 2019। सो सर, ए बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट मेडल एंड फॉर योर एवरेस्ट एक्सपीडिशन।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो चलिए सर, अभी हम शुरुआत करते हैं कि हम जानना चाहेंगे कि आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी।
1: जी, मैं सियांग, उस समय वो वेस्ट सियांग था, अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सियांग डिस्ट्रिक्ट जमलो मोंगकू विलेज से है। तो वहां से हम अपना क्लास 5 तक वहां पे पढ़ा है। उसके बाद मेरा बड़ा भैया देवमाले में था, उसमें जाके हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद क्लास 12 वहां पे अलोंग हायर सेकेंडरी में जाके वापस आके, उसके बाद कॉलेज करके अभी यहाँ
0: माउंटेनियरिंग में जी है। तो कॉलेज आपने कौन सी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी कॉलेज में?
1: जी, मैं सिविल इंजीनियर एम है।
0: तो आप इंजीनियर है
1: जी, जी।
0: तो इंजीनियरिंग से ये माउंटेनियरिंग आपने, मतलब ऐसे जंप कैसे हो गया ये?
1: जी, नसीब कहीं में भी ले जा सकता है आपका, अगर लिखा है तो आप सीधा इंजीनियर से अभी हम माउंटेनियर बन गया है। तो उसमें कुछ ये भी है, उस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम ये सब देके बेहतर आता, तो कुछ बहुत कुछ करप्शन ये सब का वजह से प्रॉब्लम भी महसूस किया है। बिसाइड उसका बाद हम जॉब का अलावा कुछ और कर सकता है, वैसे मेरा ख्याल में था। और साथ में बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला था किसी और से। तो अब तक ग्रेजुएट हम माउंटेनिंग कोर्स में करके, तो कोर्स करने का बाद और जुनून बढ़ते गया। तो फर्स्ट बेसिक कोर्स किया 2014 का आधा में, 15 में एडवांस कोर्स किया। उसके बाद कुछ पहाड़ चढ़ा है, तो और भी अपना को गर्व महसूस किया है, हम और कुछ कर सकता है बोल के। तो ऐसे करके, और एक पहाड़ चढ़ने के बाद फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़ करते करते ये माउंट एवरेस्ट तक आ गया।
0: या जी हाँ, तो आपने कहा कि आपको जब आप बहुत सारे इंस्पिरेशंस थे जिसके वजह से आपने ग्रेजुएशन के बाद माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया, तो कौन कौन थे आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड को चुनने के लिए इंस्पायर किया?
1: जी, पहला तो हम जब कॉलेज 2014 में पास आउट हो रहा था, तो उसमें एक कॉलेज का प्लेसमेंट आया था। प्लेसमेंट आते वक्त हमको काम करना था दिल्ली में, तो दिल्ली में भी हम 6 महीना जैसे काम किया है।
0: Okay.
1: तो सिविल इंजीनियरिंग एक फार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था, रमेश नगर में एक ये था, उसमें काम करके तब वहां पे आदमी लोग बहुत आगे था, कोई ट्रेकिंग जाता है मनाली लेह लद्दाख उसमें जाता था। तो हम भी उसमें कहीं कहीं में साथ में, जब थोड़ा छुट्टी मिलता है तो साथ में दोस्तों का साथ, कॉलेज लोग का साथ जाता था। तो उसमें महसूस किया रहे अपना घर में, अपना जगह में, मेरा इतना पहाड़ है, नदियां है और जंगले हैं। तो उस समय वही फील कर रहा था, नहीं हम कुछ करेगा तो अपना लिए करेगा, क्यों दूसरा का पैसा देके जाएगा, हम करेगा तो अपना यहाँ में कोई किसी को पैसा देके आने देगा
0: जी हाँ।
1: ऐसे सोच विचार कर रहा था। तो लकीली उस समय मेरा यहाँ पे भी बहुत एवरेस्टर निकल चुका था। तो इंस्पिरेशन, मेन इंस्पिरेशन आपका एक पर्स मालूम आता, जहाँ पिताजी पोस्टिंग था, हम एक वेकेशन में आया था रोइंग में, तो पिताजी वहाँ पे पोस्टिंग था, तो उसमें देखा था 3 महीने लदी है, तो मिसमी बेल्ट का वहां का, तो उसका घर जला हुआ था। एक्चुअली मेन रीजन जो घर जला हुआ था, तो सुन के ये 3 महीने का घर जला है सुना था, तो उसके बाद उसको मालूम हुआ तो एवरेस्टर है। तो ये एक पॉइंट था वो एवरेस्टर का सुनाई देने वाला माउंटेनियरिंग का। और साथ में एक, हम यहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का UGC एग्जाम था, तो उसमें दे रहा था, तो पेपर में लिखा हुआ था कौन सबसे अरुणाचल से आगे क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन में अंशु था, तीने था, तफी मरा था, हम उस सवाल को जवाब नहीं दे सकेगा, नहीं दे सका। तो मतलब हम फील हुआ कि कौन किया था अभी तक मालूम, उस समय मालूम नहीं था, तो उसमें इतना अपडेट में नहीं रहता था। तो उसमें बाद में मालूम हुआ कि तफी मरा था बोल के। तो हम ऑफिस में भी ऐसे जाके मिल के भी आया था, तफी मरा कौन है क्या है, और एक उस समय एक अच्छा गाइडेंस डॉक्टर रोमियो करके, उसने बहुत अच्छा गाइडेंस किया था, उसको मिला था। चलो उस दिन को तफी मरा को नहीं मिला था, लेकिन रोमियो को, रोमियो माइटे

0: डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में इस एडवेंचर सेल का वो ये था, इंचार्ज था, तो उसको मिलके बात किया है क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ऐसे करके आके पूछताछ किया है, पूछताछ करके आके हम कहाँ पे कोर्स करता है उसको मालूम करके आ गया था। तो खुद जाके उस समय आदमी भी बहुत कम था ऐसे खुद पूछ के आने के लिए, वो लोग बोल रहा था उस समय आदमी को बुला बुला के माउंटेनियरिंग के लिए इंस्पायर करके बुला के ये कोर्स करो वो कोर्स करो माउंटेन चढ़ो तो इतना आगे जाएगा बोल के नहीं था, लेकिन खुद एक ख्वाहिश था। दिल्ली में भी ऐसे कुछ मिल गुल के कुछ दिखा था और अरुणाचल में आके अच्छा हुआ है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकता है बोल के। तो उसमें मालूम हो के हम कोर्स गया बेसिक कोर्स 2015 का फर्स्ट ये को मार्च को। उसके बाद उसी साल में 2015 का ये को अक्टूबर नवंबर को एडवांस कोर्स भी कर दिया था।
1: ओके।
0: तो उस समय एक साल में दो कोर्स कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत सुविधा भी हुआ है। उससे हम माउंटेनियरिंग शुरू हुआ है यहाँ पे अरुणाचल में जितना भी हो। और हम लोग कुछ समय में बहुत था, कोई कोई छोड़ दिया, कोई कोई अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। और हम तो जीत गया कि हमको और आगे जाना है करते। तो ये 3-4 साल में मेरा एवरेस्ट भी हो गया।
1: जरा लेट शुरू करा माउंटेनियरिंग, लेकिन लेट शुरू करने के बाद भी आपने वो पकड़ लिया उसे
0: जी।
1: बहुत ही कम समय में आपने बहुत कुछ अचीव करा है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप एक माउंटेनियरिंग करते हैं तो किस किस तरह की तैयारियां आपको करनी पड़ती है, मतलब किसी एक्सपीडिशन में जाने से पहले आपको किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती है?
0: सभी एक्सपीडिशन चाहे एवरेस्ट हो या चाहे 6000 का पीक हो, तो उससे पीक मेंटेन करना शुरू हो जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड उससे बोलता है, मेन जो 6000 एवप या 6000 का ये जो माउंटेन जो एक ही है, सबसे बड़ा और छोटा मतलब इतना फर्क नहीं होता है। इसका टफनेस जो किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, डेथ रेट किसी में ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल हमको जो ये है सेम है हर एक माउंटेन। और हम लोग विश्वास भी वही करता है, आज छोटा माउंटेन चढ़ रहा है तो प्रॉब्लम और उसका जो जितना ये है डेथ मतलब कोई भी फैटलिटी हो सकता है वो सेम रेट है। तो आपको वही फर्स्ट जो एक मेंटल प्रेफरेंस होता है, मेंटल टफनेस जितना जेल तक है उतना माउंटेनर का ये होता है। और साथ में फिजिकल फिटनेस, ये दोनों है प्राइम। और एक 3 नंबर में है सबसे प्राइम जो वो फाइनेंशियल, मेंटल फिजिकल एंड फाइनेंशियल यानी कैपिटल पैसा जो तो तीनों साथ में होगा तो आपको भगवान ऑलमोस्ट साथ देगा। जब तक तीनों ये नहीं होगा तो वही आपका लाख का ऊपर में है। अगर ऊपर में सक्सेस होने का बाद भी ऊपर में कुछ क्या हो सकता है, वो तो बाई चांस एवलेंस आ गया आपका और लाइक क्रेवासेस में गिर गया, तो उसका उसको तो उपाय नहीं है, वो तो हम खुद नहीं कर सकते। वो भगवान कहीं में भी हो, अगर आस मरना है तो घर में भी मर सकता है या तो पहाड़ में भी लास्ट एंड वक्त पर मर सकता है, तो उसके लिए इतना ये नहीं है। लेकिन जो मेरा तरफ से प्रिपरेशन करने के लिए, एक पहाड़ को चढ़ने के लिए पहले तो आपको फिजिकल फिटनेस 100% चाहिए और एक मेंटल फिटनेस। जो मेंटल जितना वहां पे बहुत सारा तकलीफ आ जाता है एल्टीट्यूड में आने के बाद, सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है, आप कभी कभी सोचता है कि हम इसका बाद गिव अप कर देगा, ये यहाँ का ऊपर नहीं जा सके सोचता है, लेकिन उसमें अपना मेंटेलिटी को बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके आप आगे और मुकाम हासिल कर सकेगा। और साथ में हम जैसे माउंटेनियर लोग के लिए बहुत कष्ट होता है, कभी कभी स्पॉन्सर नहीं मिलता है, साथ में आपको खुद का पैसा और अपना माँ पिताजी का जो पैसा है उसको लेके वहां पे, वो तो उसमें रिटर्न तो नहीं मिलेगा, पर भी अपना कुछ एक्सिस एम्स अपना जो साहत है उसको करने के लिए जो पैसा जाता है तो उसके लिए भी बहुत।
1: आपने अभी एक बात मेंशन करा कि अगर जब कभी आप पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें बीच में मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत बार गिव अप भी कर देते हैं। इन योर केस व्हाट कीप्स यू गोइंग, आप मेंटली अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग बनाते हैं?
0: जो मेंटल ये एक विलिंगनेस होता है जो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा पावर होता है। जो पहले भी कोई कहा था किसी भी चीज को चाहता है तो पूरा कायनात मिलाने में जुट जाता है। यही एक
1: माउंटेनियरिंग के साथ साथ आप शायरी भी करते हैं?
0: नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को दिल से करेगा बोल के चाहता है तो वो एक आप मेंटल फिटनेस बोल सकता है। क्योंकि जब पहाड़ चढ़ते समय वही एक चीज था।

0: कुछ कुछ ये सब ना, हम तो आराम से वहां पे जाके अच्छे से पढ़ाई करके ऑफिस में बैठ सकता है, उससे ख्याल आते रहता है छोटा छोटा चीज, तो उसमें वो गिव अप करने के लिए एक बोलता है छरो, एक हो जाएगा इतना तक, हो गया हो गया हो गया बोलता है, लेकिन उसमें एक आपका विलिंगनेस, जितना आप दिल से चाहता है
1: जी हाँ
0: कुछ करना ही है हमको, चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, चढ़ना है, और स्पेशली इसको फीडअप भी करता है, ये हम लोग इंसान है, अपने आप को बहुत झूठ बोलने के लिए इजी होता है, क्या करता है जब झूठ बोलता है, दर्द हो रहा है तो दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कहने से सच में दर्द नहीं होगा,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: इसके लिए हम लोग माउंटेन में जब चढ़ते समय हमको करना है, करना है, पूरा ये करता है, हम लोग बोलते रहता है नहीं हमको करना है, कुछ भी हो करना है, तो कभी कभी एक क्लिप्स होता है जो चढ़ते समय बहुत आदमी लोग कोई कोई वहां से गिव अप करके आ जाता है, एक ही माउंटेन में नहीं होता है, हर एक अलग अलग माउंटेन होता है, एक टापनेस जो सबसे ज्यादा उसमें हो जाता है, तो उसमें कोई कोई गिव अप करते कर देता है, लेकिन जब जिस किसके पास विल पावर नहीं है ना, माउंटेनियरिंग हमको करना है, मरो जियो हमको करना है, तब हम लोग जाके वो सक्सेस होता है
1: जी हाँ,
0: वो।
1: तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि माउंटेनियरिंग में फिजिकल फिटनेस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है शायद.
0: जी
1: हाँ, तो आई थिंक माउंटेनियरिंग बच्चों का खेल नहीं है. अंटिल एंड अनलेस आपके पास वो विल पावर और डिटर्मिनेशन ना हो, शायद आप आगे नहीं जा पाएंगे, नो मैटर आपके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हो तो भी.
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: ये बिल्कुल सही।
1: तो अब तक आपने, जब से आपने शुरू करा माउंटेनियरिंग, अब तक आपने किस किस एक्सपीडिशन पे जा चुके हो आप?
0: जी पहले तो शुरुआत यहाँ पे कोकटांग बोल के है, जो ट्रेनिंग का दौरान कब्रुदम, ये कोकटांग ये ग्लेशियर में सिक्किम में है, ट्रेनिंग का दौरान वहाँ पे हम लोग को ये किया था, चढ़ने दिया था एडवांस ट्रेनिंग का दौरान, उसमें शायद 5,800 का आसपास का, तो उसमें एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, उसमें तो काफी मतलब खुद भी लग रहा था, खुद थोड़ा वीक भी लग रहा था, उसमें कुछ ये कोर्स जस्ट शुरू हुआ था, हो रहा था, और साथ में कुछ पता नहीं था कि माउंटेनिंग डू एंड डोंट्स ये सब भी पता नहीं था, जो भी हो आगे जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, इंस्ट्रक्टर आगे जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, तो खुद कितना चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, अपने आप में कोई इतना आइडिया नहीं था, उसका बाद
1: बस चिड़ियों
0: जब
1: की तरह एक ही लाइन में चलते
0: हाँ
1: जाइए, चलते
0: चलते
1: जाइए.
0: गया, लेकिन जब हम एक अपना खुद तो ऑर्गेनाइज करके डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ये किया था, स्पॉन्सर किया था, डॉक्टर रोमियो माइते, किशन टक्संग, मेरा साथी और तारक दोगर और बिबू शर्मा बोल के हम लोग से टीम था, एक लद्दाख से भी एक औरत था रिंचिन मैडम, तो वो लोग गाइड कर रहा था उस चीज को, लेकिन उसमें खुद ऑर्गेनाइज किया है वो एक्सपीडिशन स्टोक कंगरी करके 6,200 मीटर सी लेवल से, तो उसमें बहुत चीज एक्सपीरियंस हुआ है, सेकेंड एक्सपेडिशन था, लेकिन सेकेंड होने से भी वो मेरा मेरा ये से सबसे टफेस्ट भी है एक तरफ से, उसमें खुद सब चीज किया, सामान वामान खुद बुका, जहाँ कैंप में पहुंचा थे वहां पे कुछ सामान लोड फेरी ये सब, मेन जो लोड फेरी में जो ज्यादा टाइम लगाता है कोई उसमें गिव अप कर देता है, पहाड़ चढ़ना तो ये कर, एक एक्सपीडिशन को किस तरह से जाना है, कहाँ लेवल से क्या जाना है, क्या कौन सा सामान कैरी करना है, कौन सा नहीं करना है, उसमें सब चीज कुछ एक्सपीरियंस क्या था, हम लोग का साथ वो महान वाला लोग क्लाइंबर लोग था साथ में, इसलिए वो एक्सपीरियंस जो मैं हमको बहुत कुछ सिखाया है, उसमें एक एक जगह ऐसा था उसमें 3-4 आदमी लोग गिव अप कर दिया था, एक ये में रेंज में पहुंचने के लिए, एक ही एज एज जहाँ पे एज टाइप का था क्लाइंब करना था वहां पे पहुंचना था, तो उसमें हम लोग रात का 12 बजे ऐसे को निकला था, चलते चलते उस जगह में हम लोग का 3:30 का आसपास में पहुंच गया था, उसका बाद जो ऊपर जाना था वो सबसे तकलीफ था, तो उसमें हम लोग का आधा टीम लोग नीचे गया है, हम और एक 3 आदमी हम लोग धीरे धीरे जा रहा था ऊपर में जा रहा था, तब अकेला हो गया खुद भी, और वो जो साथ में था वो पीछे में है, और जो आगे में था वो आगे में है, तो उसमें शुरुआत है फर्स्ट अपना खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज वाला ये टीम, उसमें काफी तकलीफ हुआ है, मेन जो जहां वहां से सीख के मतलब एवरेस्ट में भी बहुत काम आया, बाकी सब
1: ओके,
0: चीज तो
1: बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था वो
0: हाँ
1: आपके लिए.
0: हाँ हाँ हाँ कुछ खुद ऑर्गेनाइज करना और दूसरा ऑर्गेनाइज करते समय साथ में जाना वो फर्क होता है, लेकिन जब खुद ऑर्गेनाइज होने से सब चीज मालूम हो जाता है कि क्या करना है, तो उसमें था इस तो कांग्रेस भले ही छोटा फीक है पर भी मेरे लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उसका बाद जाके काफी ये मैं नेपाल साइड में हम ये किया है, क्योंकि एवरेस्ट उस साइड में था और एवरेस्ट का सामने में एक ग्राउंड में

0: एवरेस्ट का सामने में उसका ग्राउंड का क्या है उसको सीखना, और वहाँ का बोल भाषा सीखने से क्या होगा। और साथ में कोम्बू रीजन में बहुत अच्छा अच्छा माउंटेन है, मेराफिक करके है, और ये आपका आइसलैंड, और मेराफिक का साइड में और एक था, एक केरला बोल के है, बहुत कुछ वहाँ पे सीखने का मौका मिला है वो जगह में, चार पास। और 2017 को प्री एवरेस्ट का ये मैं लोचे गया है 8,500 आसपास में, ऑल का वो भी 5 हाईएस्ट माउंटेन था, वो सब में जाके बहुत कुछ मिला है फाइनली
1: 2018 को एवरेस्ट।
0: एवरेस्ट कर।
1: हाँ, तो अभी फिलहाल तो मैं आपका ध्यान एक उस बात पे लेकर आना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं का ध्यान, जिसके लिए आपको रिसेंटली बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले, और वो था आपका जो रेस्क्यू मिशन था रिसेंटली हमारे सियोमी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे जो प्लेन क्रैश हुआ था N-32 जून 2019 में, उसके रेस्क्यू मिशन में आप शामिल थे, तो उसके लिए आपको बहुत रिकॉग्निशन मिले। मेरे श्रोताओं को बता दो कि रिसेंटली इसी रेस्क्यू मिशन के लिए उन्हें स्टेट गोल्ड मेडल भी मिला, और साथ ही साथ चीफ ऑफिसर कमांडिंग अवार्ड जो मेडल भी मिला गया, जो सिविलियंस को नहीं दिया जाता, पर इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो अवार्ड रिसेंटली मुंबई में भी इनको इस रेस्क्यू मिशन और एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए दिया गया। तो हमें उस रेस्क्यू मिशन के बारे में आपके एक्सपीरियंस जरा हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
0: जी, रेस्क्यू मिशन मेरा ये साल में 4 रेस्क्यू मिशन हुआ है, उसमें से एक है ये N-32 रेस्क्यू। मेरा रेस्क्यू मिशन में एक इतना ये नहीं था, हम वो होप नहीं किया था कि हमको कुछ ऐसे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा करके। तो हम एक एडवेंचर कैंप करा रहा था, तो फर्स्ट अपना पार डे लेवलीहुड के लिए जो कमाना था इसके लिए हम वहाँ पे मियो में, तब ये फेसबुक व्हाट्सएप में देख रहा था कि N-32 एक अरुणाचल में गिर गया जून, हम लोग 5 तारीख ऐसे को उसको खबर मिला था, गिरा था आपका जून 3 तारीख को। तो उसमें हम ये करके, अरे ये चीज तो अरुणाचल में हो रहा है कैसे कैसे, उस समय वॉलंटियर्स नहीं है ऐसे करके देख रहा था। तो हम वहां से डायरेक्ट में, और एक मेरा भाई था तगुंग टमुत करके, वो भी अच्छा ये है रिवर राफ्टिंग गाइड है, तो उसको हम बोला है ईटानगर में, हम दोनों वहां से सुबह को आके यहाँ पे शाम का 7-8 बजे को ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुंच गया था। तो नेक्स्ट दिन सुबह को हम दोनों, हम घर में था तो न्यूज़पेपर में देखा है, तो अभी तक धुंध रहा है बोल के, तो धुंध रहा है बोल के आया था न्यूज़पेपर में अरुणाचल टाइम्स में। तो हम उसको देख के फिर, अरे ये तो अभी तक धुंध रहा है, तो हम तो मिल गया होगा ऐसे सोचा था। वहां में सिर्फ व्हाट्सएप वायरल में देखा था तो उसमें भी इतना विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके पक्का मैसेज मिल गया कि हाँ अभी तक धुंध रहा है, कोई वॉलंटियर भी नहीं हो रहा है, आर्मी लोग और ये एयरफोर्स वाला लोग धुंध रहा है बोल के। तो हम डायरेक्ट वहां से जाके, नहीं ये सब चीज तो हम लोग का काम है, मतलब मन ही मन में ऐसा आ रहा था, तो ये सब चीज हम लोग का काम है, माउंटेनियर पर्वतारोही का काम है बोल के, जंगल में गुम हो गया तो हम लोग को पर्दा हाथ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए करके। तो अपना ह्यूमेनिटी, मतलब क्या होता है कि जब चीज को कोई ये हो रहा है और आपका काबिलियत उसमें है, तो एक एक गिल्टी महसूस होता है, अरे हमको स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्पॉन्सर करके कुछ किया है, हम क्या रिपे बैक किया आज तक। तो हमको यही सोचना था कि नहीं इसमें हम ट्राई करना चाहिए एक बार, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अपना ये के लिए, अपना कंट्री के लिए ये करना चाहिए, ये चीज ट्राई करना करके। तो हम वहां पे गया है आपका वो दहिसर मैनेजमेंट ऑफिस में, तो उसमें एक सार था, तो उससे पूछताछ किया है कि ये क्या क्या हो रहा है, हम भाग ले सकता है वॉलंटरीली करके पूछा है। तो बोला नहीं ये चीज जो हम लोग का ये नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और SDRF का नहीं है बोल के, ये आर्मी और एयरफोर्स का ये है, सर्जन रेस्क्यू ऑपरेशन है बोल के। तो फिर हम जीतना ही चौरा है, हम एक बार चीज मतलब करके देखना ही है सोच के। तो हम उसको बोला है कुछ और आप पर्दा हेल्प कर सकेगा बोला है, तो वो उसका दीदी एमओ अभी तक नाम याद है लवसंग करके, ये वेस्ट सियांग का दीदी एमओ को फोन किया है वहां से, तो वेस्ट सियांग का वो DC को बात करना पड़ेगा बोल के, तो ऐसे बोला है। तो हम दोनों उसका 12-1 बजे को नेक्स्ट दिन को वहां से ईटानगर से निकल के पासीघाट का तरफ, और उसमें क्योंकि जब जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू होना है कुछ कुछ ऐसे जरूरत है जो हम, मेरा पास नहीं था, मेरा पास जो था रोप शॉप जितना था टेंट वगैरह सबको ले लिया था उसका। रोइंग में हम लोग रात का 12 बजे ऐसे को पहुंचा है, खुद गाड़ी का तेल सेल जितना है वो सब भी खुद मैनेज करके, اور سامان جتنا ہے اس کو بھی مینج کر کے. تو نیکسٹ دن صبح 4 بجے کو پاسیگھاٹ پہنچنے کا بعد تھوڑا ایک گھنٹہ

0: ऐसे के लिए रेस किया था गाड़ी में ही बैठ के। तो उसके बाद बोलेंग में, सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोलेंग में गया था। बोलेंग में जाके डीसी से रिक्वेस्ट किया था, डीसी उस समय नहीं था, तो हम फोन में बात करके वहां पे जाके एक विलिंगली जा रहा है बोल के, एक वॉलंटरी ये के लिए एप्लीकेशन दे के हम सीधा आलोंग डीडीएमओ को मिलने के लिए आलोंग में। तो आलोंग वाला जो बोला है काइंग में है अभी, तो काइंग में जाके हम लोग उस शाम को सो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन को हम लोग उसको डिस्कस किया है डीसी और ईएसी और आर्मी ऑफिसर लोग को था, हम लोग जो वॉलंटियरली आया है बोल के, वो लोग भी थोड़ा खुशी हो गया था क्योंकि वहां पे जो पहाड़ दे फेट कर रहा था वो लोग 5,000 कुछ ऐसे 4,000 जो जा रहा है शिकारी लोग को, तो लोकली इतना नहीं आया था। तो हम लोग ही फर्स्ट सिविलियन था जो वॉलंटरी विदाउट एनी पैसा
1: वाओ
0: और जो ये का वजह और सामान भी खुद, खाना पीना भी खुद लेके आया था। तो सालू को बोला है तो हम लोग ये प्लान है बोल के, तो वहां पे पहुंचा है तो एयरफोर्स वाला लोग और आर्मी वाला लोग और ये लोग था, ये सी सर था। तो उसने बोला है तो हम लोग जो एक्चुअली उन लोग का साथ डिस्कस करके बोल रहा था, तो उन लोग एक पुराना जगह को जहां पे ऑलरेडी उन लोग ढूंढ रहा है उस जगह को करके मैप भी हमको दिखाया था, मैप भी हमको दिखा के ये जगह ऐसे ऐसे है। तो हम बोला है एक हम लोग मतलब एक ऐसे काम कर सकता है जो मतलब पहले ढूंढ चुका है, 7 दिन हो रहा था वो लोग ढूंढ के नहीं मिला है वो जगह को, प्लेन से भी ढूंढ रहा है वो, सबसे भी ढूंढ रहा है, चार पास उन लोग का एयर में भी था, नीचे में भी ढूंढ रहा है, तब भी नहीं मिला है। तो हम बोला है नहीं ये जगह में नहीं मिला है तो दूसरा जगह हम लोग ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग जिस दिन निकलने वाला था उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, तो हम लोग उसका कारण थोड़ा रुक गया था, लेकिन वो रुक के अच्छा ही हुआ है हम लोग के लिए, अगर उस दिन को नहीं रुकना तो कुछ ना कुछ इनपुट भी नहीं मिलना था। तो उसी दिन लकीली एक आदमी आया है तके तमे करके पायुम विलेज से, तो उसको उसने एक इनपुट लेके आया था। तो जब जा रहा था तो एक प्लेन देखा था 12 करीब 12 एक बजे का समय में, तो लेकिन वो पहले समय से बहुत भरा था, यानी नीचे साइड में उड़ रहा था, तो पहले समय से भरा था। तो बोला है वो एक लाठी दिखा के इतना इतना भरा था बोल के। तो हम लोग को और भी उसमें इनपुट से अच्छा लगा है कि हम लोग जहां पे जा रहे हैं वहां से एक
1: ओ
0: इनपुट आ
1: सही
0: गया, तो वहां से हम लोग जाके काइंग बस्ती में पहुंचा है और 9 तारीख को 9। तो उसमें पहुंच के हम लोग डिस्कस किया है गांव वाला लोग को बुला के मीटिंग किया है, तो क्योंकि उस समय जो वो उस चीज जो मेन पुलिस या सब चीज का काम था, पर भी हम लोग खुद ये आया है सामान उमान खुद लेके आया है। तो एक्चुअली उसमें जाके हम लोग को एक अच्छा इनपुट में 4 आदमी आया है, तो हम देखा था बोलने वाला, तो उसमें अभी नाम इतना याद नहीं है, लिख के रखा था मेरा डायरी में। तो उसको हम जो जो इनपुट दिया था उसको हम नीचे भेज दिया था। ये हम लोग का पास पास आदमी माउंटेनर पास था और साथ में पासपोर्टर सियांग डीसी का तरफ से दिया हुआ था, तो हम लोग का वो जो सामान कैरी करने के लिए। तो जैसे तैसे बहुत बारिश भी हो रहा था पर भी हम लोग निकल के पायुम में इनपुट देने का बाद हम लोग वापस उसको भेज दिया था। तो उसका बाद हम लोग गसेंग गसेंग नेक्स्ट दिन को गसेंग पहुंचा है, गसेंग के इनपुट को हम लोग वापस भेज दिया और गते का इनपुट को वापस भेज दिया। गते में एक एक मिला था, गसेंग में भी एक मिला था। गसेंग वाला बोला है कि हम जब केटी कर रहा था तो प्लेन गया हुआ था यहाँ से, लेकिन लग रहा था वहां पे रीच में टक्कर लगेगा बोल के, लेकिन उसका बाद जैसे तैसे पार हो गया बोल के। और गाते वाला जो बोला है कि एक बॉम्ब का आवाज सुना है, बॉम्ब का आवाज सुना है तो पटाया था, लेकिन आवाज कहाँ से आया उसको आइडिया नहीं। तो 11 को हम लोग ढूंढा था साइड साइड में, नहीं मिला है। 11 का शाम को मिला था, तो मिलके यहाँ पे जो हम लोग का साथ एयरफोर्स वाला लोग भी था, हम लोग सिर्फ नहीं था, माउंटेनर 2 था, एयरफोर्स 4 ऐसे था और आर्मी लोग का था। तो ऊपर में जाते समय देखा है हम लोग सिर्फ नहीं, क्रेडिट हम लोग सिर्फ नहीं है तो सब आदमी लोग था जो एयरफोर्स का भी था।
1: वही बहुत ही कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, और कहानी तो आपकी काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग थी। फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम जाने से पहले हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं या फिर अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज अगर आपके पास है तो।
0: जी, मैसेज तो अभी अरुणाचल में तो प्रॉब्लम तो है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन इतना ठीक नहीं हुआ है, उसमें हम लोग को आगे आके यहाँ पे फ्यूचर बनाएगा बोल के। लेकिन मेरा तरफ से जो मतलब करना चाहता है ऑब्वियसली हम रिकमेंड करता है, तो माउंटेनियर करो, और अब जब तक नहीं आएगा तब तक और नस्ल में बदलने वाला नहीं है।

0: तो बदलने के लिए एटलीस्ट आ जाओ, साथ में काम करेगा, और काम करके अरुणाचल को एक सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। तो ये जो है नेपाल में जो हो रहा है वो माउंटेनर सिर्फ नहीं है जो एडवेंचर टूरिज्म का कारण है, और लेह लद्दाख में जो है एडवेंचर टूरिज्म का कारण आदमी इतना आ रहा है, जो आपको यहाँ पे जितना भी नॉर्थ इंडियन स्टेट है वही वही है, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल हो गया। आजकल लोग टूरिज्म का वजह से अच्छे से ज्यादा फेमस होता है और स्टेट का रेवेन्यू भी इतना बढ़ रहा है, तो
1: जी
0: अरुणाचल
1: हाँ
0: सबसे आगे है, डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन जब तक माउंटेनर का आदमी माउंटेनर का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा और ज्यादा ये सब एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा तब तक नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आके माउंटेनियरिंग करना है, आके करके हम लोग अरुणाचल को आगे बना सकता है।
1: जी हाँ, बहुत ही सही कहा आपने। आपसे जितना मैंने बात करी उससे मुझे पता चला कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो माउंटेनियरिंग खुद की खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो राज्य है इसे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ सभी यंगस्टर्स से ये भी कह रहे थे कि वी शुड बी एबल टू क्रिएट आर ओन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर हम खुद ही अपने आप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो हमारा राज्य जरूर आगे जाएगा। तो हाँ, जाने से पहले हम हमारे जितने भी श्रोताएं हैं उनको आपके पसंद का एक गीत सुनाना चाहेंगे।
0: जी, मेरा पसंद का ये सलमान खान का दिल दीवाना, ये गाना।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का मेहमान। आपको बता दो कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: 29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कतर के पिता कहे जाने वाले अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज दिव्य कला मेला शुरू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और
1: आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम हिंदी क्लास म्यूजिक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s टू 80s के। जी हां दोस्तों, इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी उन पुरानी यादों के सफर में और सुनवाएंगे आपको वो गाने जो आज भी खास है। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत सुन जहरीला इंसान से। गीत के बोल है ओहन सिनी और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे गीत आशा भोसले और बप्पी लहरी की आवाज में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत इम्तिहान फिल्म की। गीत के बोल ही रुक जाना नहीं और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कर्श फिल्म से। गीत के बोल है दर्द दिल और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। दोस्तों ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन सुभाष गाई ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं ऋषि कपूर, सिमी गरेवाल और दीना मुनीम ने निभाई है। इसकी कहानी रीइनकार्नेशन पर आधारित है जो उस समय हिंदी सिनेमा में बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली विषय था। दोस्तों फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने दिया था और इसके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय है। शुरुआत में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही लेकिन बाद में इसे क्लासिक का दर्जा मिला। जी हाँ, तो पेश कर रहे हैं आपके लिए कर्श फिल्म से यह गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन आप कहीं ना जाएंगे क्योंकि आपके लिए गानों का सिलसिला तो यूं ही जारी है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से। और अब पुराने गानों को छोड़कर अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत शोर इन द सिटी फिल्म से साइबो, और इस गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत नीरज फिदार और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म लव आजकल से। अब आपके लिए पेश है गीत दावत ए इश्क फिल्म से। गीत के बोल है शायराना और इस गीत का आवाज दी है सलमाली ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30

0: प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक

0: संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुस जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज सदा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म कृष्णा से। गीत के बोल है कोई कैसे, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और साधना सरगम ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश कर रहे हैं कुर्बान फिल्म का गीत। जी हाँ, और गीत को गाया है अलका याग्निक, माफ कीजिए, सरिगा कपूर और अभिजीत भट्टाचार्य ने। गीत के बोल हैं आओ मैं पढ़ा दूं।

0: chom nang akhing nam nali no studio mai chi kan ma wa pha poi ne cha hang mane kham tai kham ti ho ti khai me studio ho
1: दोस्तों भी आप सुन रहे थे मिश्मी कमांड और तैगमती श्रेताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत अल्फाबन से। गीत के बोल है मसकेर और इस गीत का आवाज दी है रोहान अबीर, शिल्पा राव और जोनिता गांधी ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत बजरंगी बाजान फिल्म से केके की आवाज में। इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग से यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वांच और श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर अन्य जुलाई में निबन आली तारीख मंगलवार इबों हांसों आजम बाजी पुनी मिनट मुख्य पेशम लक्यम वांचो साइका पां कपई पवा कहा पाए फाले वां का वां सुए इंडिया हिया यूनाइटेड किंगडम यूके देश नी बा मा तीन फन किया द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए होमोकोसत वालम गाई मखंगा हो वांगाई हजा खटखा क्या काफन वालम यूके देश मार्केट तो कोतुन जाई ते क्या इंडियन एक्सपोर्ट्स अंक्या पुलिबन आकु पर्सन सेन तोयना मा मुन सेन ड्यूटी सई मनला मनसा आई चंगतेले बो महाया होली इंडिया या यूनाइटेड किंगडम देश नी ए देश नी बा मके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तामताई ले अमई आजुक क्या बो मा देश नी जो खनक मु जों मना आसु अमई अंक हन बंग मा सोंग क्या चंगतेले कहोमा अजंग बाम इंडिया या यूके देश नी एम हजा खट खट के एग्रीमेंट का फन हान पक मके मोथो देश नी बा मके थाले जों ताई होमोखोसत जु 2030 जंग पों मलन ले होता बिलियन यूएस डॉलर अंग जो अचना दन अंग पु ओल जीले 2021 जंग पों मे लेट मखंगा होवंग वंग क्या चंगले चोंचुन ले अरुणाचल प्रदेश एडिशनल एडवोकेट जनरल अंग काम किया डकमर कमडक मनी ईटानगर लोक भवन तो हई ले अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी पारनाइक फई अपों असौले गवर्नर एजा मा कमडक खाले स्टेट एडिशनल एडवोकेट जनरल अंग कामजिंग क्या हानपक मा ची मोंग मई ते क्या का अंगाई एंतोले कमडक ए ची मो ची सत रूल ऑफ लॉ वन लम तो ले गवर्नमेंट बो मई स्टेट खनक नु जो मोंग ते कन सुंग मंगोई ले हा मे जंग मा ले जो मोगले सासोक अंग क्या ले ओंग हु तैपु ले वन क्या बो मा खनक नु अंग हो तु मा जस्टिस को तोन ले स्वक अंग क्या हिया जुडिशियल सिस्टम तो क्या खनक नु मोंग ओंग कन ओंग जि आचोंग आचन पुकु मा लीगल हिया प्रोसिक्यूशन मेसनरी थम ए मोकसा अंग क्या होली मोरसत आचोंग क्या होली अंग जो सत्ते के मो चु वनसेले कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट मा मनप सोम ए मा लजो हाई क्या जंगवाट टीचन मोलियम ए पारसी पार्लो सर्कल हिया दामिन सब डिविजन मा हुरी हिया दामिन होनोइनि बा लम मक्या साई अमा शिक्या बो मा तबिजो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हिया हमपुंग फो अमापु ए ले तले यो थमसि ना जो ले तो ले हजा बा मा अनपसोम होनु मा यो वाट क्या जंगवाट खो मदे क्या नेतनम ए सेपा हिया ईटानगर नि बा लमचु पाके के संग

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम। जी हाँ, और पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत अंधाधुन फिल्म से। गीत के बोल है लैला और इस गीत को गाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाचकर
2: फील कर रहा
1: हूँ। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

दूसरी सीढ़ी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ईद उम्मीद में श्रोताओं का समाचार।

0: वांगचू श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईदू मिसमी कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर अचला पुची जी हुलुपी आंडोलिनी एतनिची ईदू मिसमी आहोला कीजी दरगालंबो इंडिया में प्रागबु पाऊं हमने यूके माचे आंजी आमे मुमा इंडिया माचे आंजी आमे तेवे अम्रवा तेला कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सेटाची एता नवे जोने पगाम बौदा ला होगा महा इनु एजर के आन्यो के माचे नु शोलापु अम्रवा तेला सेटा कोको माने इनु एजर के ना असु माचे नु लिबा आतिकानी में मानो बिलियन यूएस डॉलर पाऊं रे अभिया मैं दगाओ दा ला होगा याकूदो ने आ ऐहा या इमु पहुँचे केस है या पर आते में शो ने आहुल आहुल आहुल दगा दा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक में बुनी ईटानगर ची लॉक बाउन मने अरुणाचल प्रदेश मचे मने एडिशनल एडवोकेट जनरल शायगा दुगमार कामदुग को चौगा महो लगाने अलविची केस मा केस अथुसुया दोने कोर्ट में प्रा जोरगा वे आरंडाई दा लगा दा आहोगा बुनी बुनी निगा अनिमी आयोग में अरुणाचल प्रदेश अन्य होता हो डिस्ट्रिक्ट मचे आयोम रो ओमा दोने एकिशा आमेमु एहायां दे बता आहोगा अलि ब्रू मने अरुणाचल प्रदेश अतिपु मौका पे ने अन्य हो मगा मचे गादा बु एजर ब्राकिन हो इन दोने माउ इन हो कानी इमु इंपैक्ट हुआ एबा महो अरुणाचल प्रदेश आतिका एम मचे अन्य हो किनी इमु ना एबा दा आहोगा ऐसा बुगे ची ब्रू मने माउ मगा ने कट हो के एक्टर पाकु ऐसा रिगे एक्टर कांबा माउ मगा हो आये छे हुलु किनी ब्रिसा अन्य हो के कल्बर्ट दफे मौके अन्य हो के मची छे मगर हो इयो गवर्नमेंट ची ओ माउ मगर हो तारो इलेक्ट्रिक ब्रा मौके अन्य हो का पी इलेक्ट्रिक बो हूँ इचुआ हाइडल प्रोजेक्ट तामको कानी स्कूल का स्वाइ दोने मालालु प्राइवेट ओ यहाँ यंदे बता आहोगा आय महो कुंकुमे डिस्ट्रिक्ट पार्सी पार्लो सर्कुल मचे पूरी दामिन आए छे तुलान दे बदा आहोगा पके के संग डिस्ट्रिक्ट मचे पाकरो आतिकोंदो ने ईटानगर से पाए छे तुला वहाँ बदा आहोगा महो आ आए छे अपत्यो मा इन्हें

0: ့ဝင်ပေါ်ဆက်တာနဲ့ Susi Infrastructure Private Limited မှာချိမဲ့လာဟုတ်ကအမဟောအချေအပတကနာဗမ်တပ်ပွေအာအချေမနဲ့ရှိကကြီးမနာနဲ့ District Administration မဲ့လာတကပတာအဟုတ်ကအပါစပန်စီ District မှာမချင်ပရိုဂရမ်မဲ့ဒါပရီဂျိုဒီလီဒီကော်လိုနီမှာချင်အွန်တော်မောင်မကကြီးကအဟားရပါနဲ့အနာရှလံဘရော SMA တဟိမီအကဒါအဟောကမဟောဒစ်စထရစ်အက်ဒမင်စထရေးရှင်းအာအနာရှလံဘရောအရောကပါနဲ့ကကြီးကအမဲရှုကပါအတဆုပကံပဒါအဟောကအာနေစပရစ်အလီမန်တရီအဂျူကေးရှင်းဒီပါတမန့်မှာချေဒစ်တီဒါရိုက်တာအလာတေဝဲရူလ်အချုမအာဂျီတိုချီပွားအဂျူကေးရှင်းမင်နစ်တာပီဒီဆောနာမင်ပူနီမီတင်းဂျီနေကမဟောBlock Education Officer Post Mane Deputy Director Ajiwa Mache Rule Achu Pra Ajitwa Chipwa Department Mache Ajalambo Main Minister Go Chicha Huwai Bada Ahoga Indian Army Mache Spearhead Division Koko Khajiga Spearhead Gunners Man Aha Achalapuchi Jiholoke Ne Jiholo Ni Mache Ne Isyang District Sigar Military Station Mane Anyaho Kani Arnachal Pradesh NCC Battalion ma che mawani hu NCC alambro UAS tonem she UAS training aigala da la hoga NCC alambro me army che drone ma ne andane wa achu chi po asaga na wa cha ali training aigala da la hoga abunana Arnachal Pradesh ma che papum par district la pa ge holoyo district ma ayo sada ne itanagar meteorological center much me la hoga ne a district ma ma chin atika brage ma na pra ayo bon bon ayo nya ma do ne a bridge o sada la hoga buni england ma chin lords atiko ne test match akaga ma india ma chin yaku cricket team me england he ma ka ne in ho ran ma ne anega bada a hoga team india me ali anega ne ko ko ab bada ne Union Sports Minister Mansukh Mandavia me lahegada ahoga etanchi idmishmi aho alimao dabai echa akaswani itanagar dibrugarh nale idmishmi program ma echamta ashe ahonso khya ma ho etanyi hendo irita yo chase chi ahonji
1: dosya bhi aap sun rahe the idmishmi shadao ka samachar एडोमिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब पेश है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और पेश कर रहे हैं पहला गीत जर्सी फिल्म से, गीत के बोल है मैया मेनू और इस गीत को गाया है सशक्त परंपरा ने।
2: मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया कल।

ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबा सनई सोम जुलाई लिंग रंगसर बलई तारीख पां हजनेरा खड़को पां आरो रंगजा बलई बे खुमनी थोर जमसो तांसा प्रोग्राम तफांग रहे मचौ रंगजा सऊ सहायता रमन कचे रुंगरंग रोकवांग कुनका मामाई रो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम मुंग नई तुंगनांग कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर निनापसा मसो से फांगी इर एग्रीमेंट र इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम मुंग नई तुंगनांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोहम पर सहेंग म सिचार पर पर रखवाई र और इर अजुंग एग्रीमेंट म मुरो कामवांग पर पां हजनेरा क्रासी पांग नांग इनहांस ट्रेड पार्टनरशिप कौलम म सोम द परम इंडिया यूके रोडमैप 2030 पर जगनांग लामरो पांग हजनेरा सुमसे पांग हाई कौ पनांग रचासी बिलियन यूएस डॉलर ngan atak double trade tayang mo tanro India ne United Kingdom trade agreement po sehero India po globally integrated ne resilient ra competitive economy kayang mo kaunang areng lamlu jangro ira agreement po kamnang se chi jamaso bali bai areng sector tamnang UK tarif po तथुम चिवांग इंडियन एक्सपोर्टर्स मई हेर हुबिदा प लापची मोरो द अरुणाचल प्रदेश एडिशनल एडवोकेट जनरल डुकमार कामदुक प मने ईटानगर नंग लोक भवन नंग गवर्नर केटी परनाइक जम रम द अनिलश कामदुक प स्टेट एडिशनल एडवोकेट जनरल म थाखा म गवर्नर र कामदुक म रन दहुतनांग अपीर कामप अहम सोमचिंग वरो गवर्नर र कामदुक म वीस कुरीत परम कामदुक र कानून प जांगनांग लामलो स्टेट सुरकरी मने अरुणाचल प्रदेश वांग मई म कामप सोम कुशिंग वरो अपीर रतुंग रंगो गवर्नर र फांत रंग प अलिंग जनरोरे खाम प लेमरो मने रानाफ कोरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट नांग पारसी पार्लो सर्कल नांग नई दामिन सब देवियन नांग नरी तथियन जान तुम फान तो अरो होरी हा नई दामिन हा तुम वंग हाय प खाम र लोंग न तुम वरो रुंगरांग तथोक तो परतुंग नांग पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट नांग मशहूर नाम रंग अहन जन रो पाक्रो केंग नांग सेपा एटानगर गाड़ी लंप खी खेत रो लंप कतंगन रंग वरो तो आरो इर लंप दहुजेंग म सनै रोम राची मोरो सुसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वन रफाम द परम इर लंप लाइरंग जंग मोरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन र महेंग मोरो त पर यु मनै रंग ला दा पर यु हा नंग दिल्ली दी कॉलोनी नंग द खाम लेम द नंग हम ताम तथेन त नंग म हारो वुवाक नै अरेम तांशोंग वारुंग तांवांग प लुंग वन लरो रसे बंगा अपा तंका ताम वांग मै हेंग प हम प खु म रिलिक लाम रो ngo रो द परतुंग नंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन र तांशोंग वारुंग तांग तां थेन द प प राय क त आरो रिलिक लाम र तंका ताम वांग मै म हो हाय कु म लाम रो ngo रो द अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोनार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ पोस्ट वांग प्रमोशन कौलम म डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीडीईई पोस्ट कुमंगरो रिक्रूटमेंट

नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायरेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में। डिफिकल्टीज बिकम वीक व्हेन दे फाइंड यू स्ट्रांग। डिफिकल्टीज बिकम वीक व्हेन दे फाइंड यू स्ट्रांग, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मुश्किलें तब कमजोर हो जाती है जब वे आपको मजबूत पाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा स्ट्रांग रहिए, अपने मुश्किलों का सामना डट कर कीजिए। दोस्तों स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:27 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। और हाँ, थैंक यू सो मच दांपक जी, आरजे दांपक जी, आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। श्रोता, ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे आज के इस सफर में मंजू पामो। वेल दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके, तभी तो लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराते हैं आपको हमेशा। चलिए इस मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ बहुत ही अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ। स्वाद के पीछे मत भागो हर बार, स्वास्थ्य भी है जीवन का आधार। संतुलित भोजन जो रोज अपनाए, हर दिन नई ऊर्जा वो जरूर पाए। स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से। चलिए बता दूं आपको कि आज के इस अंक में हम बातें करेंगे कुछ खान पान के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो गर्मियों के मौसम में हमें मना की जाती है। जैसे कि दोस्तों, गर्मी के मौसम आते ही, बहुत ज्यादा धूप होते ही पेरेंट्स का यही कहना होता है कि गर्मी के मौसम में हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये बात कितनी हद तक सही है, और अगर सही भी है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों नहीं खाना चाहिए खासतौर पर गर्मी के मौसम में नॉनवेज, इस बारे में बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि गुड इवनिंग ईटानगर के दौरान। वेल दोस्तों, ये पूरी तरह सही नहीं है कि गर्मी के मौसम में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। यदि नॉनवेज ताजा अच्छी तरह से पकाया गया और सीमित मात्रा में खाए जाए तो इस गर्मियों में भी आप इसे गर्मियों में भी खाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से पहले के समय में लोग गर्मियों में नॉन वेज यानी कि मांस मछली खाने को सलाह नहीं दिया करते थे। ऐसा इसलिए होता था दोस्तों क्योंकि हम सभी को पता है कि पुराने समय में, पुराने जमाने में रेफ्रिजरेशन नहीं था, पहले फ्रिज नहीं थे, इसीलिए गर्मियों में मांस जल्दी खराब हो जाता था। इसी कारण लोगों ने सावधानी के तौर पर गर्मियों में नॉन वेज कम खाने की परंपरा अपनाई थी। और तो और दोस्तों, गर्मियों के मौसम में पाचन पर अधिक भार ना पड़े, इस कारण भी नॉनवेज खाने से मना किया जाता था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोटीन और फैट अधिक होती है नॉनवेज में, इसे पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। गर्मियों में शरीर पहले से ही गर्मी से जूझ रहा होता है, इसीलिए भारी भोजन लेने का आलस्य अपच और पेट की परेशानी करती है। दोस्तों, गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण मांस मछली और चिकन में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यदि इन्हें सही तापमान पर रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का ना यदि इन्हें सही तापमान पर दोस्तों ना रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में मांस मछली स्पेशली गर्मी के समय में खाने से मना किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसे साधन नहीं थे जिससे हम इन सभी चीजों को सेफ या सही तरह से फ्रेश रख सकते थे। तो आज के जमाने में भी आप अगर चाहते हैं, गर्मियों के मौसम में नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो आप फ्रिज में रखे हुए फ्रेश या ताजा मांस खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, और जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी होती ही नहीं है दोस्तों। और बात ये भी है दोस्तों कि कुछ जानवरों में ये प्रजनन काल का समय होता है। कई क्षेत्रों में गर्मियों या मानसून के दौरान कुछ मछलियों और अन्य जीवों का प्रजनन काल होता है। इस समय

0: उनका शिकार कम करने की परंपरा पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाई गई थी। क्या हम गर्मियों में नॉनवेज खा सकते हैं? क्या नॉनवेज खाना सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा ताजा नॉनवेज खरीदें, इसे अच्छी तरह से पकाकर खाएं। बासी या लंबे समय तक बाहर रखा हुआ नॉनवेज ना ही खाएं। पर्याप्त पानी पिया कीजिए। सैलड, दही और मौसमी फलों के साथ संतुलित भोजन जरूर करें। बहुत अधिक तला हुआ, भुना हुआ या मसालेदार नॉनवेज खाने से बचें। दोस्तों, जितना हो सके गर्मी के मौसम में पानी पिया कीजिए। हाँ, एक बात जरूर है कि पानी साफ जरूर होनी चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह की और भी कुछ बातें होंगी आपके साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है बजरंगी भाईजान फिल्म से।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: तो मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं आपको कि पहला गीत आपने सुना बजरंगी भाईजान फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का हमारे साथ अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, जो खाओगे वही बन जाओगे, सही भोजन अगर आप लोगे तो स्वस्थ कहलाओगे। इसीलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि एक अच्छा शरीर और एक हेल्दी शरीर पाने के लिए आपको भोजन भी अच्छा ही करना होगा। जैसे कि दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में भी आपको अपने शरीर के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही है। अगर आप ऐसे में प्रोटीन चाहते हैं इस गर्मी में भी अपने शरीर के लिए, तो आप पनीर, अंडा, सीमित मात्रा में मछली या चिकन, हल्का और कम मसाले में पका हुआ खाया कीजिए। ये आपके सेहत के लिए इस गर्मी में बहुत ही हेल्दी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया ही है आपको कि आप जितना तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार कम खाओगे, उतना ही अपने आप को हेल्दी महसूस करोगे अपने आप में। गर्मियों में हल्का, ताजा और संतुलित भोजन ही सबसे अच्छा भोजन होता है। जितना भोजन प्रकृति के करीब होगा, उतना ही शरीर स्वस्थ, ठंडा और ऊर्जावान रहेगा।
1: Taurus is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: तो दोस्तों, आशा भोसले के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बता दें आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दो आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिल्ली कॉलोनी में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरांग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स के लिए बेसिक यूएएस एवं सीयूएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। क्रिकेट में भारत का बर्मिंगम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच जारी, और फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहा दो जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया है कि इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एमटीएल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थित पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों का निशाना बनाकर किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किए जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फिलिस्तीन और इसराइल

0: बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथ ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया है कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिलीदी कॉलोनी में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा में घरों का नुकसान, पशुधन तथा सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से 500 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं और अनेक परिवार बेघर भी हो गए हैं। हालांकि संपत्ति के नुकसान तथा प्रभावित परिवारों की वास्तविक संख्या का आधिकारिक आंकलन अभी किया जाना बाकी है। जिला प्रशासन ने नुकसान का विस्तृत आंकलन करना शुरू कर दिया है ताकि प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों की तैयारी की जा सके। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरंग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए सेना ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। समारोह में वेस्ट कमिंग जिला उपायुक्त डॉ दिलीप कुमार, 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राहुल मिश्रा, एडीसी दिरंग, पंचायत नेता, गांव बूढ़ा और चुने गए छात्रों के अभिभावक शामिल हुए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE 2026 को सफलतापूर्वक पास करने के बाद जांग और दिरांग के सीमावर्ती गांवों के कुल 25 छात्रों को वुड्स पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में दाखिला मिला है। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने चुने गए छात्रों और उनके माता पिता को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्रों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ सैनिक स्कूल में उनके दाखिले के लिए व्यापक इंतजाम करने में 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की। ऐसी पहलों के माध्यम से भारतीय सेना नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सार्थक योगदान दे रही है। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स के लिए बेसिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS एवं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये प्रशिक्षण राज्य में 22 AP एनसीसी बटालियन पासीघाट तथा सिगार मिलिट्री सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को उभरती हुई ड्रोन तकनीक की जानकारी दी गई और आधुनिक सैन्य अभियानों में UAS तथा CUAS की भूमिका के बारे में उनकी समझ को और मजबूत किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क शून्य की सुविधा प्राप्त होगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा असानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद

0: हेलो दोस्तों,
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद। तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ और गीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

श्रोता जोधा अकबर फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि आगे लेकर आए हैं हम आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों गर्मी बहुत है आज के दिन में और इस गर्मी में अगर बहुत ज्यादा काम नहीं हो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाहर मत जाइए, अपने घरों पर रहिए।

श्रोता, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। पहला गीत आपने सुना सुपरहिट मूवी आरआरआर से राग पटेल की आवाज में, और इस वक्त आपने सुना इस गीत को दे दे प्यार दे फिल्म से।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

बताना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही साथ ये भी बता दें श्रोता आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम जहां आज हमारे बीच हमारे साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगी बॉडी बिल्डर मिस हिलांग याजी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतः। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी सुंदरी, एक ऐसा ब्यूटी जो इंटरनेशनल लेवल पे देश और हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, और वो भी बहुत ही अनोखी फील्ड में। जी हाँ, 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 के गोल्ड मेडल विजेता अरुणाचल प्रदेश का गौरव मिस हिलांग याजिक। हिलांग याजिक जी हाल ही में लुधियाना में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप के विमेन्स मॉडल फिजिक कैटेगरी में भी गोल्ड जीत के आई है, और इस तरह के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके, और उनसे जुड़ी बहुत सारी बातचीत हम हिलांग जी से करेंगे जो मौजूद है आज आकाशवाणी के स्टूडियो में। हिलांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपके अचीवमेंट्स के लिए याजिक जी, और थैंक यू अरुणाचल प्रदेश और इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में, और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ तक हुई है, क्या हुई है, और आपकी जो करियर की बिगनिंग है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें।
1: हाँ, थैंक यू सो मच आपको हमको बुलाने के लिए, हम बहुत ऑनर फील कर रहे हैं यहाँ आके। सो मेरा नाम हिलांग याजिक है और हम कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जो मेरा पढ़ाई है, हम अभी मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं पॉलिटिकल साइंस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, बट डीएन कॉलेज से हम पास आउट हुआ है। एंड स्कूलिंग अगर बोलेगा तो सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी, हायर सेकेंडरी पोलो कॉलोनी एनजी सेक्टर, जिसमें हम क्लास 8 तक रहा है।
0: ओके, आप कुरुंकुमे से है पर लेकिन पढ़ाई जो
1: बोर्न एंड ब्रॉट अप पूरा नाहरलगन में हुआ।
0: ओके, तो हाँ बिगनिंग आपका करियर का बिगनिंग, हाँ मतलब करियर का बिगनिंग मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये बहुत ही यूनिक स्पोर्ट्स है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ये बहुत कम्प्लीट एक नया स्पोर्ट्स जैसे है, तो इसमें और आपकी जो करियर जहां तक हमने देखा है, हमने पढ़ा है, उस हिसाब से उम्र भी बहुत कम है। ऐसी इतनी कम उम्र में आपने इस करियर को कैसे, इस करियर की तरफ आपकी शुरुआत कैसे हुई?
1: सो फर्स्ट ऐसे कुछ प्लान नहीं था, बट जैसे हम एक डांसर भी है, सो हम जुम्बा क्लासेस वगैरह कराता था। सो जो जिम में हम जुम्बा क्लास कराता तब हम क्लास 10 था, आई थिंक 10 और 11 में भी, तो उस समय में जिम का ओनर भैया ही था, भैया ही बोलता था हम, तो भैया ने बोला कि स्टेट में पार्टिसिपेट मतलब करके देखो, कंपटीशंस वगैरह होता है हल्के। सो सेकंड टाइम था वो स्टेट लेवल मेरे लिए, तो हम पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, एंड फर्स्ट टाइम में हमको सेकंड मिला। सो
0: बहुत स्टेट में
1: सेकंड मिला, तो बहुत समय तक पता नहीं था कि इससे आगे भी जाना है बोल के। एंड हम लोग एक्चुअली बोल से वुमेन कैटेगरी में बोल से इतना पॉपुलर तो नहीं था, मेन लोग का तो होता था बहुत, कॉम्पिटिशन होते रहता था, बट वुमेन का उसमें इतना आइडिया नहीं था दूसरा को भी। और उस समय में कोई जिम, जब हम जिम जाता था, हम 16 ईयर्स का था, तो इतना जिम में वुमेन भी दिखाई नहीं मिलता था।
0: कल्चर तो अभी
1: ही ट्रेंड में आए हैं। हाँ, तो उस समय में जिम करना मीन्स बहुत ही मतलब जिम नहीं, जुम्बा करता था, एरोबिक्स करता था, बट जिम थोड़ा सा बहुत रेयरली, जो थोड़ा नॉलेजेबल है, जो बाहर से शायद से देख के आए वो लोग ही करता था। तो धीरे धीरे हम किया है, 4 टाइम्स हम विनर रह चुका है अभी स्टेट में। हाँ, तो कंटिन्यू स्टेट को तो कंटिन्यू किया है, बट बाहर एक दो बार खेला था, बट उसमें भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला और इतना आइडिया, उसमें भी इतना आइडिया नॉलेज नहीं मिला हमको। बट 2021 आई थिंक उसमें हम फर्स्ट टाइम सिक्किम में नेशनल्स खेला था, फेडरेशन कप, बहुत प्रेस्टिजियस स्टेज है वो फेडरेशन कप, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें पार्टिसिपेट करके ही हमको पता चला है कि कितना लेवल हाई है बाहर कंपटीशन का। एंड हम लोग का स्टेट में हम जब पार्टिसिपेट करते थे, इवन द स्टेट लेवल, सब लोग ऐसे था कि स्कूल में भी हमको इतना मस्क्यूलर है। टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम हम मस्क्यूलर भी नहीं था ऐसे सोचने से, मतलब जिम करके थोड़ा बॉडी अलग दिखता है, मतलब थोड़ा फिट दिखता है, पता चलता है ये लड़की जिम करता है बोल के, बट ऐसा मस्क्यूलर नहीं था। बट उस समय हम लोग का स्टेट में तो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता था वो, तो इसलिए हम भी शायद से इतना आगे नहीं किया होगा। बट नेशनल लेवल में जाके हम देखा है तो वहां में कुछ अलग ही है वो लोग के लिए, क्रेज जो अलग है
0: स्पोर्ट्स के
1: लेके। हाँ, एंड वो लोग, हम लोग का जो कैटेगरी है मॉडल फिजिक है, तो उसमें ऐसे भी नहीं है कि वो लोग इतना बल्कि ह्यूज है, ऐसे भी नहीं है। वो लोग को देख के हमको मजा आ रहा है, आई मीन इतना अच्छा बदन, और वो लोग इतना ये चीज को लेके इतना प्राउड भी है, तो हम उसको देख के फील हुआ है।

0: कि कुछ कर सकते हैं यहाँ। एंड हम उस समय फोर्थ आया था तो हम बहुत रोया था, हम सोचे कि कैसे हम फोर्थ आ सकते हैं
1: हाँ
0: अलके, हमको थर्ड तो आना ही चाहिए था अलके। तो उसके बाद सेकेंड टाइम किया, मैं उत्तराखंड में था बट हम उसमें नहीं जीता, तो फाइव में भी नहीं आया था। तो बहुत दुखी के साथ वापस वापस हम नेक्स्ट साल सोचे कि अभी तो एक बार ट्राई करके देखता है बल्कि। तो थर्ड टाइम में हमको सेकंड मिला, सिल्वर मिला। तो उसके वही वही ईयर में हम 2024 में हम ट्रायल्स दिया इंटरनेशनल के लिए। तो इंटरनेशनल के ट्रायल्स में तो हम सेलेक्ट हो गया, बट वो ईयर में हम दो बार इंटरनेशनल खेलने गए। एक फर्स्ट हम गए इंडोनेशिया, सेकंड मालदीव्स किया था, बट दोनों में नहीं हो पाए। तो उस समय मेरा यूनिवर्सिटी भी था, लास्ट ईयर था 2024 में। तो हम सोचे कि नेक्स्ट ईयर 2025 में हम गैप ले लेते हैं। गैप लेने का था, हम अच्छे से एक साल प्रिपेयर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ प्रैक्टिस करना, सिखाना क्लाइंट बहुत मुश्किल था मेरे लिए मैनेज करना। तो मे भी शायद प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गया था होगा टाइम देने दे पाके। तो हम एक साल प्रिपेयर कर लेगा अच्छे से। तो 2025 में हम ईयर का बिगिनिंग से हम डायरेक्ट किया।
1: ट्रेनिंग
0: हाँ, तो हम एशियन के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा था।
1: जी
0: तो उस बीच में ही ट्रायल्स दिया, मैम इन नेशनल से हमको कॉल आया कि ट्रायल्स देख के बोला कि तुम साउथ एशियन भी पार्टिसिपेट करो। भूटान में हुआ, भूटान तो हम लोग का बहुत सामने में है,
1: हाँ
0: अरुणाचल से बहुत सामने है, तुम आराम से जा सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिस भी ज्यादा नहीं होगा। तो हम वो मैम का रिकमेंडेशन में हम गया साउथ एशियन। हम नहीं भी जाना था, प्रिपेयर तो कर रहा ही नहीं था, हम एशियन के लिए
1: हाँ
0: प्रिपेयर कर रहा, बट क्योंकि हम मेरा प्रिपरेशन जो लॉन्ग चल रहा था तो मेरा बॉडी ऑलरेडी अच्छा हो चुका था।
1: हाँ
0: तो हम गया, लकीली हम जीता, और उससे ही बहुत लोग जान गया हमको साउथ एशियन से।
1: वही
0: फर्स्ट
1: वही
0: इंटरनेशनल हो गया मेरे लिए,
1: हाँ
0: हम तो
1: फर्स्ट
0: बहुत
1: इंटर
0: रोया वहां। हमको वो लोग स्टेज में बोला कि मत रो, फोटो अच्छा नहीं आएगा क्योंकि वो एक बहुत ऐसा मोमेंट था कि वो फोटो सब जगह जाना था। तो हम इतना रो गया कि मेरा फोटो, लेकिन हाँ एक पॉइंट के बाद हम थोड़ा तो होल्ड किया, हाँ फोटो बहुत अच्छा अच्छा आया। उसके बाद वही ईयर में हम साउथ एशियन खेला, एशियन में भी गोल्ड मेडल लिया थाईलैंड में
1: अच्छा
0: वही ईयर में। उसके बाद
1: टू
0: हम
1: थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में ना
0: 25 में हाँ एशियन गया, उसमें भी वापस गोल्ड लाया। तो बैक टू बैक हो रहा था। उसके बाद सब लोग बोला कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल लो के हमको, वो वापस इंडोनेशिया में हो रहा था दिसंबर में। तो उसमें खेला, उसमें लेकिन सिल्वर सिल्वर आया स्विम सूट कैटेगरी में। एक कैटेगरी में फोर्थ आया, दो कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, तो एक में फोर्थ आया, एक में सिल्वर आया।
1: अच्छा ये जो आप जैसे कैटेगरीज बता रही है, तो इससे आपसे बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है, ये स्पोर्ट्स जो किस तरह का स्पोर्ट्स है, ये बहुत नया है हम लोगों के लिए। तो बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी आइडिया नहीं होगा कि किस तरह के ये स्पोर्ट्स है और इसमें कितने कैटेगरीज होते हैं।
0: कैटेगरीज तो ऐसे काउंट करके हमको भी एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है,
1: जी
0: बट हाँ मेरा कैटेगरी जो सबसे सबसे लाइक टोन्ड आप बोलने से, क्योंकि मेरा कैटेगरी ना मॉडल फिजिक है,
1: जी
0: तो आप
1: मॉडल
0: नाम में ही
1: फिजिक
0: मॉडल है तो आप समझ रहा होगा कि मॉडल जैसा दिखना है हम लोगों, बट ऐसे हम लोगों को बस टोन चाहिए, टाइटनेस, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते टाइटनेस, कट्स चाहिए हम लोग को, बल्कि नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा मसल नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: तो मेरे से ऊपर एक कैटेगरी होती है वो स्पोर्ट्स फिजिक बोलते हैं उसको, वो हम लोग से
1: जी
0: थोड़ा मस्कुलर होता है, बट हम लोग जैसे ही थिन होगा बट हम लोग से थोड़ा मस्कुलर। उसके ऊपर में फिर फिगर होता है, फिगर कैटेगरी, वेलनेस होता है, और
1: अच्छा
0: सबसे ऊपर में होता है बॉडी बिल्डिंग जो डायरेक्ट मस्कुलर वाला वो कैटेगरी होता है।
1: ओके
0: तो लड़का लोग में भी सेम होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, मैन फिजिक, स्पोर्ट्स फिजिक, एथलेटिक फिजिक, ऐसा करके। तो कैटेगरी ऐसे कि थोड़ा हम लोग से लीन है, हम लोग से थोड़ा मस्कुलर, थोड़ा मस्कुलर, थोड़ा
1: ओके
0: मस्कुलर, ऐसा करके जाते हैं। तो हाँ ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, बट इसलिए शायद से इसलिए मे बी अरुणाचल में भी इतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि जितना भी बोलो एक्सेप्ट और नॉट की ओलंपिक स्पोर्ट्स को ज्यादा ध्यान होता है, होना भी
1: हाँ
0: चाहिए, ओलंपिक तो बहुत प्रेस्टिजियस है, होना भी चाहिए। तो हाँ इसलिए शायद से बॉडी बिल्डिंग को
1: नहीं नहीं ये भी
0: इतना
1: तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, तो ओलंपिक्स भी तो इंटरनेशनल लेवल का ही खेल है, तो दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, नाम का ही
0: हाँ
1: फर्क है मेरे ख्याल से
0: बट हाँ यू नेवर नो, ओलंपिक्स में आ भी सकते हैं,
1: आ भी
0: एशियन गेम्स
1: सकता
0: में
1: है।
0: आ भी सकते
1: हाँ आ भी
0: हैं।
1: सकता है, आ
0: हाँ
1: भी सकता है। और हम क्योंकि ऐसे सोचते थे कि बॉडी बिल्डिंग, जब मैं आपको देखते थे तब भी मैं सोचते बॉडी बिल्डिंग मतलब तो आदमी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा एक मतलब तगड़ा बॉडी होना है। आपका तो ऐसे नहीं है, एक सुंदर सा जैसे अभी आपके तो अभी अभी जो आपकी कैटेगरी है मॉडल फिजिक, उसी का जैसे जो मॉडल होता है जो हमारे ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह में
0: हाँ
1: जाती है उस तरह का फिजिक है आपका भी, फिर कैसे ये बॉडी बिल्डिंग में ये कैसे हो सकता है,
0: बहुत कंफ्यूजन है इसमें. एंड इसके इससे हमको फिर बहुत ट्रोलिंग भी होता है ये चीज को लेके. तो हाँ, बहुत लोग ऐसे ट्रोल करते हैं, इसका तो बॉडी भी नहीं है क्या, बॉडी बिल्डर है. हाँ, ऐसे बोलता है. बट हाँ, हम ये भी समझते हैं कि वो लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है, वो लोगों को पता नहीं है. हाँ, बट धीरे धीरे पता हो जाएगा, तब शायद से हाँ वो लोगों को डिफरेंस पता चलने से नहीं बोलेगा होगा शायद.
1: तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपको जो उतना पहले शुरुआत में उतना एक्सेप्टेंस नहीं था बोलना पड़ेगा, तो क्योंकि ये खेल में ये एक कॉस्ट्यूम का भी इसमें हाँ, एक अलग ही फंडा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूजुअली ऐसा कॉस्ट्यूम तो फिर होता नहीं है. तो क्या रिएक्शन रहता है घर वालों का, दोस्तों का, या फिर सोसाइटी में जब आप सोशल गैदरिंग्स वगैरह में जाती है, तो क्या इस तरह कुछ सुनने को मिलता है कॉस्ट्यूम को लेके?
0: जब फर्स्ट मैं स्कूल डेज में हम था तब तो हाँ, लेकिन हम जब स्टेट लेवल, हम तो स्टेट 5 बार खेला है, 4 बार जीता है, 1 बार सिल्वर लाए. बट तो उस समय में स्टेट में ऐसा होता है कि हम लोग अभी है जैसे हम लोग दाइक प्रॉपर बिकिनी पहनते हैं ना, स्टेट में थोड़ा शॉर्ट स्टेप का पहनते हैं, ऐसे प्रॉपर बिकिनी नहीं पहनते. बट ये अरुणाचल में होते हैं, लाइक सिक्किम में आप खेलेगा ना, सिक्किम में जो नेशनल जो स्टेट लेवल होते हैं ना, उसमें ऐसा कॉस्ट्यूम पहनने नहीं देते, वो हमें प्रॉपर ही चाहिए. लेकिन वो लोग इतना माइंड डेवलप हो चुका है वो लोग का, बट हम लोग का हमें ऐसे पहनने से हो गया और तो वो और मेरा समय में तो पहनने से और भी हो गया. तो हाँ, उस समय में ऐसे बोलते कि मतलब उस समय इतना शॉर्ट्स पहनने से भी बोलता ही था कि कैसे कपड़ा पहन के उतरे और ये क्या स्पोर्ट्स है. मतलब वो लोग का ऐसा नजर था कि जान बुझ के पहन रहे, मतलब इसको स्पोर्ट्स का नजर, मतलब नाम दे रहे ऐसा वाला, ऐसे बोलता था. बट हम ऐसे खराब तो लगता था ऑब्वियसली, बट उस समय से मेरा माइंड जैसा था कि हम ही खुद इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो दूसरा को कहाँ आइडिया होगा हमसे बोल के. तो धीरे धीरे करके हम सोचता था हो जाएगा, धीरे धीरे करके पता चल जाएगा. और हमको भी बहुत ऐसे नहीं था कि इसको हम बहुत सीरियसली करेगा बोल के, उस समय तो हम भी ऐसे नहीं सोचा था.
1: ऐसे कोई प्लान था
0: ही, टाइमली करता था, एक बार स्टेज में उठ के जीत के वापस गायब हो जाता था, हम भी ऐसे ही होता था. तो हाँ, स्टेट के बाद जब फर्स्ट टाइम सिक्किम में जब पार्टिसिपेट किया था, तब तो प्रॉपर बिकिनी पहना, तब तो बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था हमको, ये क्या कपड़ा पहन के उड़ गया बोल के. हमको मतलब इसको की कौन सा स्पोर्ट्स है, मतलब ऐसे टाइप का हमको बहुत बोला था. हाँ, सोसाइटी में भी, सोसाइटी को भी ब्लेम तो वही जैसे नई नॉलेज था इसलिए वो लोग बोला है. बट ऑब्वियसली मतलब बड़ा लोग तो होता ही है, कैसे कपड़ा पहन के अभी वो लोग सामने में ये खेल रहे हैं बोलने से इस फोटो दिखा के, तो थोड़ा हेजिटेंस वो लोग होता ही है. अभी वो लोग ऐसे की मतलब एक्सेप्ट पता नहीं करने मन हो के कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं, लेकिन प्राउड तो है वो लोग अभी.
1: अभी तो थोड़ा आदमी जान गया ऊपर से, और वो लोग को अपने नाम भी इतना कमा लिया है और देश के लिए और स्टेट के लिए, तो अभी समझने लगा है.
0: एंड वो लोग अभी एक्चुअली वो लोग को पहले ऐसा लगता था कि जान बुझ के पहनता है ऐसा वाला, बट अभी वो लोग को पता चल गया कि स्पोर्ट्स के लिए है, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें ऐसा पहनना पड़ता है. बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग है, आप कपड़ा पहन के करेगा तो कहाँ मसल दिखाई मिलेगा, वो भी है तो बात. हाँ, तो वो एक प्रॉपर है. अभी वो लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ बॉडी बिल्डिंग है तो ऐसे कुछ तो पहनना पड़ेगा जिसमें मसल दिखाई मिलेगा. तो हाँ, शुरू में हुआ था ड्रेस को लेके सोसाइटी, बॉडी बिल्डिंग अब बहुत लोग मेरे रिलेटिव लोगों से बोला था कि ऐसे स्पोर्ट्स खेलो जो ओलंपिक्स में है, मतलब ज्यादा फायदा होगा हमको.
1: अच्छा,
0: तो हम छोटा से थोड़ा स्पोर्टी था, तो वो लोग बोलता था कि ज्यादा फायदा वाला खेलो ऐसा. ओके,
1: अच्छा, तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो जैसे बॉडी बिल्डिंग है तो ट्रेनिंग जो किस तरह से करना पड़ता है, कितना टफ होता है ये स्पोर्ट्स?
0: सबसे ज्यादा तो ऐसा होता है कि हम लोग का एक पेज होता है, जैसे एक फर्स्ट पेज जो हम लोग बल्किंग करते हैं, थोड़ा वेट गेन करते हैं, क्योंकि मसल भी बिल्ड करना पड़ता है फर्स्ट. आपको जब लीन करना पड़ता है तो मसल भी, एक क्वालिटी मसल आपको गेन करना पड़ता है, तभी जाके मसल वो लीन बॉडी आता है. जैसे कि आपका फैट का रेशियो ज्यादा है, तो आप जब लीन करेगा तो मसल नहीं रहता है, आपका फैट्स है ना, तो वो डाउन हो जाता है, तो आपका बॉडी में भी मसल नहीं रहता, बस हाँ स्लिम हो सकता है ऐसे. तो हम लोग का फर्स्ट फेज वो होता है कि हम लोग एक क्वालिटी गेन करना पड़ता है, मसल गेन कर ले, कुछ वेट तक हम लोग गेन कर लेगा, उसके बाद ड्रॉप करना पड़ता है. तो ड्रॉप वाला सेशन जो सबसे तकलीफ होता है हम लोग के लिए, 2-3 महीना, मतलब 2-3 महीना तो हम लोग एक्सट्रीम डाइट में चला जाते हैं, बट वो 2-3 महीना के लिए हम लोग को 1 साल से प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब हेल्दी खा के. आप ऐसे नहीं कि पूरा साल में मर्जी खा लिया और 2-3 महीना में आप स्ट्रिक्टली बैठ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाता है वो जितना हम लोग खाया है, जंक फूड खाया है, जो भी खाया है, वो पूरा वो उस समय में असर नहीं करेगा, बट बाद में वो पूरा जमा होकर रह जाता है, उसके बाद हम लोग को ड्रॉप करने में बहुत तकलीफ हो जाता है. क्योंकि हम जब फर्स्ट इंटरनेशनल जब हम गया था, हमको लगा कि हम बहुत बढ़िया है, हम तो बढ़िया हो गया, हम 58 कुछ पहुंच गया था, हम तो भी तो 6-7 kg कम किए. बट हम जब हम इंटरनेशनल लेवल, नेशनल में पता नहीं चलता है, नेशनल में तो हम ही बेस्ट है अभी, ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हैं. तो इंटरनेशनल जब गए तो वो लोग का बदन देखा, तो हम यहाँ में तो हमको सब बोलेगे तुम बहुत पतला हो गया ऐसा वाला, इंटरनेशनल लेवल में देखा है तो वो लोग सब इतना ह्यूज है, लेकिन उस समय तो हमको बेस्ट लग रहा है अपना आपको ऐसे, लेकिन बाद में हम जब फोटोज वगैरह अभी का हम जब अपना बॉडी को देखते हैं तो हम अभी इतना ह्यूज है, लेकिन हम वेट तो तीखी है मेरा, मसल बहुत ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट इंटरनेशनल में हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कार्डियो करना पड़े हमको।

0: नॉर्मली जब वेट ड्रॉप करते हैं बॉडी बिल्डर लोग इतना कार्डियो नहीं करते, मसल लॉस हो जाते हैं, क्वालिटी मसल जो है ना वो लॉस हो जाते हैं. लेकिन मेरा मेरा पार्ट में हो गया था, हमको मसल ही लॉस करना है, अभी फैट्स तो नहीं है बॉडी में, मसल लॉस करना है. तो उसमें हमको बहुत तकलीफ है, मेरा बहुत बार हम फिजियोथेरेपी भी, हम एवरी कंपटीशन में जाते ही था, पैर मेरा कुछ हो जाएगा, शोल्डर पैर तो लेग्स तो होते रहता था रनिंग का वजह से. हम इतना रनिंग करता था, हम सुबह 1 घंटा रनिंग करता था, इवनिंग में 1 घंटा रनिंग करता था, और नहीं हो रहा है बोले से 1 घंटा रनिंग, 1 घंटा स्टेयर मास्टर सीढ़ी वाला होता है ना वो करता था, शाम में करता था. हम मेरा क्लाइंट है, हम पर्सनल क्लाइंट लेते हैं, वो करना, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था क्लास कर, अभी पढ़ाई अभी भी अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल दिन में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मॉर्निंग में क्लाइंट ले रहा है, अपना ट्रेनिंग कार्डियो ऐसा करके मेरे लिए बहुत. और फिर हम अभी अकेला रहते हैं तो फिर अपना खाना भी खुद बनाना है, तो वो प्रोसेस जो हम यूनिवर्सिटी जाने से भी, हम सुबह क्लासेस वगैरह करा के हम टिफिन लेके जाता था और हम बस से जाता था क्योंकि हमको ज्यादा सोने नहीं मिलता, तो हम बस से सो के जाता था. तो ऐसा होता था, ट्रेनिंग उस समय यूनिवर्सिटी समय बहुत टफ था. उसके बाद हम सोचे कि यूनिवर्सिटी खत्म होकर थोड़ा आसान हो जाएगा, यूनिवर्सिटी खत्म हो, 1 साल गैप है, फिर भी काम जितना आप सोचते अभी आराम है, आराम नहीं होते, और क्योंकि उसमें थोड़ा यूनिवर्सिटी खत्म हो गया टाइम है, तो क्लाइंट बेस बढ़ गया मेरा, क्योंकि थोड़ा जान गया आदमी लोग को भी ऐसे कि थोड़ा नॉलेज वाला चाहिए ऐसा, तो क्लाइंट बेस बढ़ गया. अभी फिर पैसा को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद रह रहा था, खुद का एक्सपेंसेस, खुद हम पूरा एक्सपेंडिचर खुद करते हैं, हम अपना जाने का, खाने का, रहने का सब कुछ, तो पैसा भी चाहिए, आपने ट्रेनिंग भी चाहिए ऐसा करके,
1: लोगों को ट्रेनिंग भी देगा, खुद भी
0: ट्रेन करना है, फिर खाना वाना बनाना वो सब.
1: आपका भी अपना एक कोच अलग से रहता होगा?
0: हाँ, मेरा भी कोच है, मेरा कोच ओडिशा का है. तो अभी जब सब इंटरनेशनल और फर्स्ट नेशनल जब मेडल जीता है तब से 2024 से अभी तक वही कोच है.
1: तो वो यही है?
0: नहीं, ओडिशा में हम लोग ऑनलाइन करते हैं, आई मीन वो ऐसा ऑनलाइन वीडियो वाला नहीं, बट वो हमको डाइट चार्ट वगैरह उसके बाद वर्कआउट्स वगैरह कर देते हैं. यहाँ का जितना इंटेंसिटी में करना है वो हम डिसाइड करते हैं कितना करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि अभी इतना हम ट्रेनिंग कर लिया, हम भी कोच है एक, और हम इतना ट्रेनिंग कर लिया कि हमको अपना बॉडी को पता हो गया. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में है वो कोच को पता नहीं चल रहा होता है ना, वो तो वहां से भेज देता तो हमको वीडियो में तो नहीं देख रहे प्रॉपर, लेकिन हम भी अपना बॉडी को इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तो हम अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं.
1: अच्छा, अगर कोई करना चाहे बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहे तो वो शुरुआत कैसे करे? ट्रेनिंग में अगर कहे तो क्या ऐसी चीज है जिस जो उसके लिए मस्ट है, जो होना ही चाहिए?
0: सबसे पहले तो विल है, विल और डिसिप्लिन तो नॉन नेगोशिएबल है, वो डायरेक्ट होना ही पड़ेगा. एंड बॉडी बिल्डिंग ऐसा वाला स्पोर्ट्स है कि आपको सबसे पहले अपने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि सोसाइटी आपको कुछ भी बोल सकते हैं, सोसाइटी भी बोल के नहीं है, बट ऑनलाइन ट्रोलिंग तो अलग लेवल है. और ऐसे है कि आप ऑनलाइन, आप सोशल मीडिया में नहीं रह के भी कर सकते, बट सोशल मीडिया का भी फायदा है, हमको बहुत लोग जानते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, इसलिए भी. तो हाँ, आपका चॉइस है कि आप सोशल मीडिया में नहीं रहके भी कर सकते हैं, बट हम लोग सब क्या के लिए करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं, मतलब अपना अपना पैशन है वो अलग बात है, लेकिन साइड में अगर रिकॉग्नाइजेशन पैसा मिल रहा है तो उसको क्यों डिनाई करना है?
1: बिल्कुल.
0: तो हाँ, वो अलग कैसे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में आ गए ट्रोलिंग के लिए तो हमेशा रेडी रहना है अपना, कुछ भी चीज हो. एंड फेलियर सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा लाइक फर्स्ट टाइम में जाएगा जीतेगा ऐसे हो भी सकता है, बट नहीं होने का चांसेस ज्यादा है. तो वो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ट्रेनिंग. और ऐसे कि ये ना बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है, जैसे हम आगे भी आपको बोल रहे हैं, बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है. आप आदमी ना बहुत होता है 1-2 महीना में भी आके बॉडी बन जाएगा सोचने वाला भी होता है ना, तो वो माइंडसेट को चेंज करना, आप सोच के जाना है कि ये बहुत लंबा गेम है. आप अभी से शुरू करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, फ्यूचर में इसका मिलेगा ना, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे सोच के जाना पड़ेगा. तो हाँ, कंसिस्टेंसी, विल होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन.
1: अच्छा, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहे, जैसे कि जैसे अभी आपने कहा आदमी का तो एक अल्टीमेट गोल, एक नाम तो है ही, साथ में आपको पैसा भी कमाना होता है, तो इनकम आपका एक बेसिक चीज भी बन जाती, सबसे जरूरत वही होता है. तो अगर कोई इसको अपना करियर ऑप्ट करना चाहे तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा करियर ऑप्शन लगता है आपको?
0: बिजनेस वाइज में हाँ, बिजनेस वाइज में आप कर सकते हैं, आप जिम खोल सकता है आजकल तो, क्योंकि बिजनेस ही सब कुछ है.
1: हाँ, वही
0: सच बोलने से बिजनेस ही सब कुछ है. आप अगर इसके लिए फिर आपको नाम चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन. अगर आपका रिकॉग्नाइजेशन है तो ज्यादा क्लाइंट मिलेगा, आपका आदमी को अप्रोच करने इजी होता है, तो आप अपना जिम खोल सकते हैं, या फिर एकेडमी ऐसा होता है कि लाइसेंस वाला ना, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, न्यूट्रिशन वाला आजकल क्योंकि बहुत जरूरी हो गया. अच्छा डाइटिशियन होना, न्यूट्रिशन होना जिम में, और अच्छा पर ट्रेनिंग दे सकने वाला बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि नॉलेज का तो हमेशा वैल्यू है, नॉलेज डिग्री का हमेशा

0: पर्सनल ट्रेनर भी बन
1: ट्रेनर,
0: सकता है
1: हाँ,
0: या
1: बन
0: फिर आप
1: सकते
0: एक
1: हैं, जिम
0: इंस्टीट्यूट वगैरह
1: इंस्टीट्यूट
0: भी
1: खोल
0: आप
1: सकते हैं।
0: खोल सकते। हाँ देखा जाए तब तो बहुत ही एक अच्छा करियर
1: कर सकते हैं
0: ऑप्शन।
1: अभी तो, क्योंकि अरुणाचल में बहुत ट्रेंड में है। अगर आप अच्छे
0: हाँ
1: सर्टिफाइड ट्रेनर है बन से बहुत फायदा है आपके लिए।
0: क्या ये बॉडी बिल्डिंग एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स है,
1: हाँ
0: कोई भी कर सकता है?
1: नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकते अब ऐसे अफोर्डेबल। अगर आप वाइज, पहले हम ऐसे ही बोलता था कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, बिल्कुल है। लेकिन अभी ऐसे सोचने से, हम तो ऐसे बैकग्राउंड से है, मेरा पेरेंट्स तो हमको 100 रुपीज भी नहीं देगा अब सोचने सुनने के लिए खराब लगता है ना, बट हाँ ऐसे बैकग्राउंड से ही हम तो, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कर लिया है तो बाकी भी कर सकना चाहिए। जैसे हम शुरू में बोले विल का ऊपर है, विल होने से वे मिलेगा ये आपको ना। और जैसे हमको बहुत लोग सपोर्ट किया है, हमको लगता है कि आप इंसान भी अच्छा होना बहुत जरूरी है
0: हाँ वो भी है।
1: सपोर्ट मिलने के लिए। आप अच्छा कनेक्शन बनाएगा, आप अच्छा पोटेंशियल आप में अगर लोग देखेगा ना, तो आपको, आप मतलब फाइनेंशियली नहीं होने से भी हमको लगता है कि फर्स्ट पुश के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प कर ही देते हैं। लेकिन उसको कैरी ऑन करना आपका ऊपर है, आप कितना तक जा, आपका अंदर कितना
0: हाँ
1: पोटेंशियल, आप कितना तक जा सकते हैं। तो आदमी लोग देख के हेल्प करते हैं, बट हाँ खुद से करेगा बोलने से तो नहीं होगा। हम अंदर ही बैठ के अपना घर से जिम, घर से जिम करेगा उनसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम खुद करने के लिए, हम खुद अर्न किए हैं ये चीज को ना,
0: हाँ
1: हम
0: वही
1: पैसा कमाए हैं, हम फर्स्ट जितना स्टेट लेवल थे, इंटरनेशनल लेवल गए, हम अपना पैसा से किए हैं। तो
0: अच्छा
1: कुछ से कुछ कुछ तो एक वे भी ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, आपका
0: हाँ
1: पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स करने से तो बहुत मजा है लेकिन नहीं कर सकते हैं उनसे, एक अर्निंग पॉइंट भी आपको ढूंढना पड़ेगा खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार आप जीत जाएगा या फिर एक बार आप नाम आ जाएगा
0: हाँ
1: तो आपका
0: स्पॉन्सर
1: हाँ
0: वगैरह
1: स्पॉन्सर
0: भी आ
1: वगैरह
0: जाएगा।
1: आ जाएगा।
0: हाँ
1: स्पॉन्सर वगैरह भी ऐसे नहीं है आप जान जाने से आ जाते हैं बोल के, आपको जो भी
0: थोड़ा
1: हो अप्रोच
0: मेहनत
1: करना
0: करना।
1: पड़ता है। हाँ
0: हाँ
1: कुछ भी चीज आराम से तो नहीं मिलता है।
0: हाँ तो क्या आप जब जाती है तो जैसे कि शुरुआत तो चलो आपने अपना से किया, अभी तो बहुत नाम भी हो गया आपका, सब लोग जानते भी है, इवन आप वो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ कोच के रूप में भी है, तो अभी तो सरकार से आपको असिस्टेंस मिल जाता होगा।
1: हाँ लास्ट इंटरनेशनल में तो मिला था, मतलब फर्स्ट में नहीं देते है वो लोग, लेकिन हम लोग जब आके सबमिट करते हैं अपना एक्सपेंसेस जितना है, तो आप लोग को रिइम्बर्समेंट मिल जाते हैं आपका जितना एक्सपेंडिचर किया, इंटरनेशनल हो या नेशनल लेवल हो, हमें सबमिट करने से कुछ टाइम लगता है बट मिल जाते हैं। ये चीज बहुत लोगों को पता भी नहीं है।
0: हाँ अच्छा, जो कोई भी जो भी स्पोर्ट्स हो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो अपना रिइम्बर्समेंट के लिए सबमिट कर सकता
1: नहीं,
0: है?
1: सब नहीं कर सकते,
0: अच्छा
1: जो सा से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल से जो एफिलियेटेड है,
0: अच्छा जो
1: एसोसिएशन हो,
0: स्पोर्ट्स जो
1: हाँ एसोसिएशन होता है हर स्पोर्ट्स का,
0: हाँ
1: यहाँ में दो तीन तो एसोसिएशन भी होता है,
0: हाँ
1: दो तीन, एक का स्पोर्ट्स का दो तीन तो भी एसोसिएशन होता है, तो उसमें से जो रिकग्नाइज है। और कोई कोई ऐसे कि एसोसिएशन खोल लेता है लेकिन एक्टिव नहीं है, हम लोग का भी ऐसे ही था पहले,
0: हाँ
1: ऐसे हम इसलिए हम लोग को बहुत मुश्किल हुआ है असली में, एक्टिव होने से ऐसा नहीं होना था। तो मेन ऐसा होता है कि आप जो इवेंट जा रहे हैं वो रिकग्नाइज होना है, वो एफिलियेटेड होना है, जो प्रॉपर जैसे कि यहाँ से एसोसिएशन से जो नेशनल लेवल लिंक है एफिलियेटेड है, जो वो नेशनल लेवल से जो इवेंट जो लिंक है एफिलियेटेड है,
0: इंटरनेशनल लेवल पे।
1: वही वही उसको सिर्फ मिलता है, ऐसे सबको नहीं मिलते हैं।
0: वैसे बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए लेकिन समय भी मेरे ख्याल से खत्म हो रहे, तो हम आपका अभी जो क्या नेक्स्ट टूर्नामेंट, नेक्स्ट क्या क्या आपके शेड्यूल में है?
1: अभी ये तो नेशनल्स तो हम खेल लिया ना, उसके बाद एशियन है एक थाईलैंड में सितंबर में होगा, उसके बाद लाओस में होगा वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप दिसंबर में।
0: दिसंबर
1: हाँ तो
0: सितंबर
1: उसके
0: ये
1: लिए
0: 2026 में,
1: 2026 में।
0: उसके लिए तो प्रिपरेशन जोर शोर से चल रहा होगा।
1: हाँ कोशिश तो करें, क्योंकि लास्ट में एशियन में भी गोल्ड आया है तो
0: हाँ
1: प्रेशर और हाई है,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: और ज्यादा है
0: एक्सपेक्टेशंस भी
1: एक्सपेक्टेशन
0: ज्यादा
1: आई है,
0: है।
1: बट तो उसके हिसाब से अपना तो फुल देगा। अभी वहां में जाके दूसरा पार्टिसिपेंट्स को भी हम कम तो नहीं समझ सकते, वो लोग
0: हाँ
1: भी और
0: बिल्कुल।
1: ज्यादा प्रिपेयर करके आएगा, तो हम भी अपना तरफ से 100% ही दे सकते हैं।
0: तो आज आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हिलांग याजिक जो आकाशवाणी के श्रोताओं से अपनी तरफ से क्या ऐसे मैसेज देना चाहेंगे?
1: हम जनरल में एडवाइस देगा, हम बॉडी बिल्डिंग बोल के भी नहीं देगा। बॉडी बिल्डिंग जैसे हम तो बीच में बोले, बॉडी बिल्डिंग अगर आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट करेगा उनसे, बहुत विलिंग विल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन आप सोच लेना पड़ेगा कि टफ है रास्ता ना, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। और हम मेरा जैसे वाला को हम ऐसा बोलना चाहिए, मेरा जैसे इन द सेंस की जिसका फाइनेंशियल जो पेरेंट्स स्टेबल नहीं है,
0: हाँ
1: हम बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे। और हम हमेशा, हम अपना लास्ट एक स्पीच था उसमें भी हम बोला था कि ऐसा बहुत सारा होता है जो जिसका पेरेंट्स प्रिविलेज है, वो लोग प्रिविलेज है, वो लोग वो लोग को चाहे कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में ना, नहीं करने से भी वो लोग के लिए है पेरेंट्स पीछे कुछ कर देने के लिए. लेकिन हम लोग का जैसा वाला लोग जो ज्यादातर ऐसे होते कि थोड़ा

0: थोड़ा विक्टिम प्ले करने के लिए करते हैं, ऐसे होता है। हम भी किए ऐसे तो नहीं, हम भी नहीं किया, हम मेरा पेरेंट्स ऐसा उनसे दिखता वैसा उनसे दिखता, ऐसे हम भी बहुत सोचे। बट हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम लोग के लिए मुश्किल है रास्ता, जो ना रास्ता मुश्किल है, बट हम जैसे बोले कि अच्छा इंसान भी है। अगर आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते ना, यहाँ अच्छा इंसान भी है और आपको भी अच्छा होना पड़ेगा। जो फर्स्ट पुश होता है ना, वो हमेशा आपको कोई ना कोई कर ही देगा आपको पोटेंशियल को देख के, लेकिन आप में पोटेंशियल होना पड़ेगा, आप में डिसिप्लिन दूसरा को दिखना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं है कि आप पोटेंशियल है डिसिप्लिन है आप चुपचाप बैठ रहे और वो आपको खुद आके हेल्प करेगा, ऐसे भी नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा वॉइस आउट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमको हेल्प चाहिए बोल के ना, हमको ये स्टेज में हम चाहते हैं कि हमको लगता है कि हम कर सकेगा, तो आप तब आपको जाके हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही होके हुआ है। और अभी हम ऐसे बोल रहे हैं तो अभी सोचेगा कि हम तो बहुत अभी नाम हो गए ऐसे, हम सक्सेसफुल तो नहीं है अभी तक ना, हम अभी तक बहुत कुछ करना बचा है मेरा लाइफ में, और हम अभी अभी नाम है, कल तो नहीं होगा, अभी हम आए यहाँ अब दोबारा नहीं आएगा होगा, तो ये भी मेरे लिए भी टेम्पररी है। तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा अपना लाइफ को सिक्योर करने के लिए ये सब। और जैसे कि आप वन सब करेगा, जैसे आप थोड़ा फेमस हो गया, आपको थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, तो उसमें फिर डूबने जाना है। ऐसा हो जाता है ना कि हम अब तो अभी नाम वाला हो गया, उसके बाद पोटेंशियल जो गिर जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, गलत रास्ता में चला जाते हैं। तो वो सब चीज को हमेशा ध्यान दीजिए। और एक चीज है कि हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कोशिश करिए। और एक बार आप खुद से वन सेल्फ अर्निंग करना शुरू कर देगा ना, तो आपको वैल्यू भी पता चलता है वो चीज का। जब खुद से अर्निंग करना शुरू करेगा तो वो अलग डिसिप्लिन, अपना पैसा से अपना खर्च करना ना अलग ही फीलिंग होता है। तो हमको लगता है कि यहाँ का स्पेशली लड़की लोगों लड़का लोगों ना, मेरे एज का या फिर अभी जो यंग जनरेशन बड़ा हो रहा है, अपना स्किल में मेहनत करो, अपना टैलेंट में फोकस करो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। इतना पढ़ाई वाला लोग भी अभी बहुत कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं होके बैठ रहे, तो ना सबके लिए वो मौका, सबको मौका नहीं मिलेगा बहुत टैलेंटेड होने से भी। तो हमेशा हमको लगता है कि अपने लिए ऑप्शन होना जरूरी है, और थोड़ा अच्छा इंसान हमको लगता है, काइंड और हम्बल होना हमको जरूरी है लगता है आजकल के जमाने में, क्योंकि आजकल इतना झगड़ा होते रहते हैं देखने से ना, थोड़ा सा बोलने से भी जवाब देने झगड़ा होते रहते हैं, मतलब कहीं भी सुनने से ना, तो एक दूसरे में थोड़ा काइंड थोड़ा हम्बलनेस ना, एक अगर पार्टी थोड़ा गुस्सा है तो आप थोड़ा अच्छा से शांत से जवाब दे दो एक बार के लिए ना, क्या पता उसका क्या दिन चल रहा होगा ना। हम ये सब में बहुत बिलीव करते हैं, हम इतना झगड़ा हो रहा, हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो हमको दूसरा को देखने से लेकिन लगते है कि वो अगर गुस्सा मूड में बोला है तो आप एक बार के लिए हम्बल होके अच्छा से आंसर कर दो। तो हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, थोड़ा हम्बल एंड काइंड होना जरूरी है। थैंक यू, यही बोलना था।
1: ये बहुत सुंदर बोला आपने। आजकल बहुत बिजी रहते हैं लोग, स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता है, तो उसी वजह से। हेलांग जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, और जितने लोग आज के इस प्रोग्राम को सुनेंगे वे भी इंस्पायर्ड होंगे, और ऐसे कई लोग होंगे जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में जिनको बहुत सारी जानकारियां भी मिली हो। तो आकाशवाणी परिवार की ओर से जो आपके जो एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप है आने वाला सितंबर और दिसंबर में, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। हमें प्राउड फील कराइए और एक बार जीत के आइए, फिर हम यहाँ पे इसी तरह बातें करेंगे।
0: थैंक यू हमको बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: तो आप सुन रहे थे हिलांग याजिक जी से हमारी बातचीत। हम आशा करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ताकार हिलांग याजिक के साथ। बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। चलिए श्रोता, मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

स्वागत है श्रोता आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, हमेशा की तरह श्रोता मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम बातें करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें आप सभी बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ श्रोता, आज हम बातें करेंगे क्या बात कहने वाले कलाकार मिथुन दा के बारे में। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मृग्या से अपना कदम रखा, जो कि साल 1976 में आई। अपनी पहली ही फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और रातों रात मिथुन को लोग जानने लगे। वह एक बेहतरीन कलाकार के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी उनके लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि इसके बाद उनके लिए रास्ता और भी ज्यादा कठिन हो गया था। इस सफलता ने उनकी जिंदगी आसान नहीं बनाई थी। मृग्या रिलीज होने के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती के पास पैसों की बहुत तंगी थी। मिथुन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मृग्या रिलीज के एक सप्ताह बाद मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, दो दिन तक भूखा रहा। इस वक्त मुझे मृणाल सेन से मदद लेनी पड़ी। मिथुन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। नेशनल अवार्ड तो उन्हें मिल गया, लेकिन पैसों के लिए वे अब भी तरस रहे थे। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद भी मिथुन अपने कड़ी मेहनत करते रहे। उन्होंने अपने दम पर फिर कमबैक किया और 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर से उन्होंने एक इतिहास बना दिया। जी हाँ, डिस्को डांसर 1982 में रिलीज हुई एक ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसका निर्देशन बब्बर सुभाष ने किया था। इस फिल्म में न केवल भारत में बल्कि सोवियत संघ यानी कि रशिया, चीन और अन्य देशों में भी बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 1976 से मृग्या से की थी, लेकिन इसके बाद उन्हें सही पहचान मिली फिल्म डिस्को डांसर से। फिल्म में निभाया गया जिमी का किरदार उनकी पहचान बन गया और वे रातों रात सुपरहिट और सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म के बाद उनकी अनोखी डांस शैली और बप्पी लहरी की सुपरहिट संगीत ने उन्हें डिस्को किंग और डिस्को डांसर के नाम से प्रसिद्धि दिलाई। यह फिल्म सोवियत संघ में सबसे अधिक कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में शामिल हुई और वहां मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता किसी अंतर्राष्ट्रीय सितारे से कम नहीं थी। कई देशों में लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और जिमी के नाम से अधिक पहचानने लगे थे। डिस्को डांसर ने बॉलीवुड में डिस्को संगीत और डांस का नया दौर शुरू कर दिया था। इस फिल्म के गीत आई एम ए डिस्को डांसर, जिमी जिमी आजा आजा और याद आ रहा है, ये सभी संगीत बहुत ही लोकप्रिय रहे। डिस्को डांसर केवल एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने मिथुन चक्रवर्ती के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक डांसिंग सुपरस्टार के रूप में

स्थापित किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनकी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी। आइए इसी बात पर आनंद लेते हैं इसी फिल्म के इस गीत का, फिल्म डिस्को डांसर से।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों अभी अभी आपने आनंद लिया डिस्को डांसर फिल्म के इस गीत का. दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, यू नो हम मिथुन दा को जानते हैं लेकिन अन्य देशों में ये फिल्म इतनी हिट रही कि लोग उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के नाम से नहीं जिमी के नाम से जाना करते थे. तो ये तो थी यू नो डिस्को डांसर की सक्सेस स्टोरी. चलिए आप बात करते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म के बारे में. दोस्तों इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने इतने अच्छे रोल प्ले किए. प्यार झुकता नहीं 1985 को रिलीज हुई थी. मिथुन चक्रवर्ती के करियर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म रही. इस फिल्म का निर्देशन विजय सदाना ने किया और इसमें मिथुन के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिका में थी. ये फिल्म 1985 की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश में लंबे समय तक सिनेमाघरों में चली. इसकी प्रेम कहानी, भावनात्मक संवाद और मधुर संगीत दर्शकों को बहुत पसंद आए. डिस्को डांस

डांसर के बाद प्यार झुकता नहीं ने ये साबित कर दिया कि मिथुन केवल एक बेहतरीन डांसर ही नहीं बल्कि एक सफल रोमांटिक और गंभीर अभिनेता भी है। इस फिल्म की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती 1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यस्त सितारों में शामिल हो गए। देश भर में उनकी लोकप्रियता और बढ़ी तथा निर्माताओं ने उन्हें लगातार बड़ी फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। प्यार झुकता नहीं मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया और ये दिखाया कि वे केवल डांस फिल्मों के नहीं बल्कि रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों के भी बड़े सुपरस्टार हैं।

श्रोता, आपने आनंद लिया इस गीत का फिल्म तदीपार फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। प्रेम प्रतिज्ञा मिथुन चक्रवर्ती के करियर की यादगार फिल्मों में से एक है। राजा भैया का उनका किरदार आज भी उनके प्रशंसकों के बीच बेहद ही लोकप्रिय है। प्रेम, त्याग और आत्म परिवर्तन की कहानी के कारण यह फिल्म आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के प्रेमियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय को उनके करियर के बेहतरीन अभिनय में से एक माना जाता है। राजा के किरदार में उनका गुस्सा, प्यार, त्याग और भावनात्मक अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। मिथुन और माधुरी दीक्षित की ये जोड़ी को भी शानदार माना गया और दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब प्रशंसा मिली। फिल्म के गीत, विशेषकर प्यार कभी कम नहीं करना, बहुत ही लोकप्रिय रहा। तो आइए दोस्तों, आनंद लेते हैं इसी फिल्म के इसी गीत का।

इसी गीत के साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार बातों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दो आपको कि इस वक्त अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

श्रोता अरुण एफ एम प्रसारण सभा में फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। बता दूं दोस्तों आपको कि पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए बस इतना सा ख्वाब है फिल्म से।

श्रोता, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए

श्रोता उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, सोनीतपुर असम से, रंगापरा।
0: जी अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए।
2: कल रात से बहुत बारिश हुई थी और अभी बारिश थोड़ी सी खुली हुई है।
0: अच्छा जी जी।
2: और अभी गर्मी होने के लिए शुरू हो गया, लेकिन रात में थोड़ा सा ठंडा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फिर से धूप देने लगी है।
0: ओके, रात को ठंडी थी, अभी फिर धूप निकल रहा है।
2: जी
0: ओके ओके जी जी, ये धूप छाव का खेल तो चलता रहेगा।
2: यहाँ पर भी तो अरुणाचल में तो बारिश होते रहे।
0: हाँ जी हाँ जी, अरुणाचल में पूरा बारिश ही बारिश है।
2: जी जी जी, हम अभी खेत में है, चाय के बागान में हूँ।
0: अच्छा जी जी जी, और कौन कौन है साथ में?
2: साथ में मेरे भाभी है और सासू माँ है और हमारे बेटिया है दो।
0: ओके ओके, तो सभी काम खेत में काम कर रहे हैं अभी।
2: जी जी, तोड़ रहे हैं।
0: अच्छा, चाय पत्ती ना। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। और आपके वहाँ का चाय
2: के लिए फरमाइश था।
0: हाँ जी जरूर जरूर।
2: कॉल करते करते फिल्म का नाम भूल गया, लेकिन गाना थोड़ा सा गुनगुनाते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
2: मेरे साथ साथ है।

0: मेरे यार के इसी गाना था और इस गाने को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा सबसे पहले भाई कौन मंडा को और बिमल बसुमतारी को, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंगपी, देवाशीष हजरिका और प्रेमोजित चक्रवर्ती, अनुप कुमार भट्टाचार्य और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, अविनाश टैली एंड हमारे हेलो फार्मासिस्ट ग्रुप की भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति, शिवा लोहार और प्रेम सिंह सोसोदिया, केसरी सिंह राजपूत और गौतम राय बोले और राकेश जी है और बहुत सारे सुनने वाले दोस्तों को और आपको
1: जी
0: और नूरी मैम को।
1: ओके, मुझे और नूरी मैम को भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमल जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी जी, जी।
1: ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी छत्तीसगढ़ से हमारे दोस्त इंद्रभान जी कैसे हैं बताइए।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ सर, ड्यूटी में हूँ और आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ सर, और बातचीत बढ़िया हो रहा है।
0: जी बिल्कुल, ओके, ड्यूटी से आपने हमें कॉल मिलाया।
1: जी,
0: और वहाँ का मौसम कैसा है अभी इंद्रभान जी?
1: सर यहाँ का मौसम सर देखिए बादल किया है और उमस टाइप को लग रहा है सर, लेकिन ये हवा चलता है तो ठंडा ठंडा हवा चल लगता है सर।
0: अच्छा जी,
1: जहाँ हवा बंद होता है और हल्का हल्का धूप भी है।
0: ओके, बारिश हुई नहीं
1: अभी? नहीं हुई सर, ये बड़ा डिफिकल्ट है, पानी कब गिरेगा ये कोई कहा नहीं जा सकता। मौसम बनता है
0: अच्छा,
1: लेकिन अचानक पानी अभी गिरना चाहिए तो लेकिन गिर नहीं पा रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा है, उलट पुलट मौसम।
0: ओके, उलट पुलट मौसम। जी, तो आशा करता हूँ जल्दी बारिश हो ताकि आप सभी को आराम मिले गर्मी से। जी, तो इंद्रभान जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है नास्तिक, अमिताभ बच्चन जी का वो गाना है ना, हे आज के दिन बन जाएगा कल, पीछे न मुड़ के भी प्यारे आगे चल, गाय किशोर कुमार। सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत का श्रोता को, हाल उत्तर रेडियो श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके सैनिक को, ईटानगर में जुड़े सभी दोस्तों भाई बहनों को और ईटानगर में सभी स्टाफ कर्मचारियों को, खासकर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, इसका प्रसारण
0: मंगलवार को,
1: मंगलवार को शाम को 7:30 बजे ना?
0: जी, हाँ जी,
1: रात को 8 बजे और शनिवार को
0: 1:10 को।
1: अच्छा 1:10,
0: जी, सुना दीजिए। ओके, जरूर सुनाएंगे आपको। आपको पसंद का गाना कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगड़े जी।
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: परिवार में सभी कुशल मंगल?
1: बिल्कुल कुशल मंगल।
0: ओके। और मौसम कैसा है?
1: मौसम तो धूप छांव हो रहा है भैया।
0: अच्छा बारिश हुई थी अभी तक?
1: बारिश अभी मतलब 4-5 दिन लगातार हुआ है भैया, मतलब 4-5 दिन पहले।
0: अच्छा जी जी जी
1: जी।
0: ओके। और बारिश कब तक होती है आपके वहाँ पे?
1: ये तो
0: सितंबर
1: सितंबर के आसपास तक होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे योगेश जी?
1: फिल्म है धर्मात्मा और गीत के बोल है क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर
0: बड़ी सुंदर दिखती हो। वाह वाह वाह जी जी। बहुत दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा इस गीत को आपके साथ। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथियों को डेडिकेटेड।
0: ओके। तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: जी
1: आपने आपके आकाशवाणी ईटानगर में हमारा स्वागत किया सर। और हम इतने मेहनत से, इतने दिल से फोन लगाते हैं सर, और आपको याद करते रहते हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और मैं
0: अंदर
1: नाम बताना चाहता हूँ सर,
0: जी
1: मेरा नाम है राम बाबू मालवी, बोल रहा हूँ कोलार रोड भोपाल।
0: जी राम बाबू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी
1: सर आप कैसे हो सर?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया है सर,
0: जी
1: सब परिवार, मतलब हमारा संपूर्ण परिवार सब आनंद मंगल में है।
0: जी
1: और जितने भी आकाशवाणी सुनने वाले हमारे मित्र है, जैसे लोकेंद्र वर्मा जी है और बहुत सारे दोस्त, सब आनंद मंगल में होंगे सर। यही कामना से
0: जी
1: भगवान
0: जी
1: से।
0: जी जी जी जी हम भी यही कामना करते हैं, हम सभी कुशल मंगल रहे। जी तो कहिए राम बाबू जी, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, एक गाना है सर, गाने के बोल इस प्रकार है। दिल ही दिल में ले लिया, दिल मेहरबानियां।
0: बहुत ही प्यारा गीत है
1: हाँ जी
0: जी,
1: सर। और फिल्म, लगभग फिल्म का नाम बताना चाहता हूँ सर, आज की आवाज।
0: आज की आवाज।
1: जी
0: जी
1: राज
0: जी जी
1: गब्बर साहब की फिल्म थी, है राज गब्बर साहब की ही थी ये फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म है सर, मैंने देखी थी।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: जी
0: मैंने तो देखा नहीं लेकिन गाना तो सुना है, बहुत ही बढ़िया गाना है।
1: बहुत प्यारा संगीत है सर, और
0: जी
1: इसकी
0: जी
1: आवाज बहुत प्यारी है, जो भी सिंगर है उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। और
0: ये
1: अपने इंडिया में जितने भी गाने हैं सभी सुपर हिट है, सभी सिंगर अच्छे हैं।
0: जी वो
1: एक
0: तो
1: का
0: सही
1: नाम
0: बात है।
1: लेंगे तो दूसरे को बुरा
0: जी
1: लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे राम बाबू जी इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो सर आपको, आपके साथ सुनना चाहेंगे हम सर,
0: जी बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: लोकेंद्र वर्मा जी, और जितने भी सुनने वाले सभी दोस्तों मित्रों के लिए।
0: ओके तो राम बाबू जी कॉल
1: जी
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी
1: जी सर,
0: मिलकर सुनते
1: बहुत
0: हैं
1: बहुत
0: आपके पसंद का
1: धन्यवाद।
0: गाना। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार,
0: सुतापा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ओके, हमेशा बढ़िया रहिए, अच्छा रहिए जी। आज के कौन फिल्म पर गाना सुन बेन सुतापा जी?
1: अभिमान।
0: अभिमान, ओके।
1: ओहो
0: वाह वाह, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: पहले तो आपके लिए
0: थैंक यू।
1: मैं बोलते चलिए चंद्र वर्मा तो तुम आपने मोदी पुत्र बहुत
0: ओके। आवाज क्लियर नहीं, फिर भी मैंने सुन लिया है, आपने अपने जो दोस्तों को डेडिकेट किया है। तो सुतापा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर जी। मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी रमेश प्रजापति जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस स्वस्थ है, मस्त है। पानी ज्यादा गिरा नहीं, थोड़ा सा गिरा तो गर्मी और सर्दी दोनों के आनंद ले रहा है। दुकान पे बैठे हैं।
0: अच्छा,
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी का फोन आया भाई, चिल्ला ईटानगर की रिकॉर्डिंग हो रही है, करवा लो। तो हमने फोन लगाया और हो भी गई। धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा जी को, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं।
0: ओके जी, लोकेंद्र वर्मा जी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी नए श्रोताओं को वो जोड़ते रहते हैं हमारे साथ।
1: जी।
0: तो रमेश जी, आप दुकान पे बैठे हुए अभी?
1: जी।
0: ओके, तो दुकान पे बैठे बैठे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है साहेब जादे। किस घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ये ढूंढ के लाए रे, मेरा लोंग खो गया।
0: लोंग खो गया, क्या बात है।
1: जी
0: जी, बहुत ही प्यारा गाना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हमारे मित्र है, पहले तो लोकेंद्र वर्मा जी है।
0: जी।
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है राकेश है शिमला से, और विमल है, अमल है, गोल्डी है, रमेश पात्रे है, और तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से।
0: तो इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
1: जी
0: जी। तो रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड वंडा विलेज से आपके लिए मैं सोता लक्ष्मण को चाय वाले हो रहे सर, कैसे
0: जी,
1: हो आप?
0: जी चाय वाले लक्ष्मण जी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: हाँ सर
0: जी,
1: आप चाय पी लो।
0: जी जरूर चाय पियेंगे। और कहिए कैसे हो आप?
1: बस पवन कृपा, आप लोग कृपा है, पानी नहीं गिर रहा है तो गर्मी है बट।
0: अच्छा, अभी तक पानी गिरी नहीं?
1: गिरा तो है, दो तीन बार गिरा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, फिर भी गर्मी तो है ही।
1: हाँ
0: जी, तो चलिए गर्मी में चाय पीते हैं। और कहिए चाय पीते पीते कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज जैसे मौसम चल रहा है पानी का, तो एक है मोहरा पिक्चर, टिप टिप बरसा पानी।
0: मोहरा पिक्चर से टिप टिप, जी जी जी,
1: हाँ ये सुनवा देना।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: आज हमारे रहेंगे गजराज लोधी हैं, मांगी लाल चंदेल हैं, बसंती लाल सुरन, विपिन कटारी, ऋषि के तिवारी, अमित तिवारी है, एक वर्मा है, ये सब दोस्त हैं जो सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो लक्ष्मण जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: ठीक है सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ सर, मेरा नाम है सिद्धार्थ गुंडाने और मैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके सिद्धार्थ जी, आप पहली बार हमें कॉल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर जी, पहली बार इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं।
0: अच्छा,
1: और आज मेरा पहली बार कॉल लगा सर
0: जी। तो सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: और बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे बात भी बहुत अच्छी से हो रही है, बहुत अच्छी मिठास में आप प्रेजेंटेशन करते हो कार्यक्रम का। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करते हुए
0: जी। हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को?
1: बिल्कुल, अभी से जुड़ा हूँ सर।
0: अच्छा।
1: लगभग देश भर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: ईटानगर से पहली बार जुड़ चुका हूँ सर।
0: ओके, तो आशा
1: शुरुआत की है सर और आगे चलते रहेंगे ये सिलसिला। और हम आप

0: से जी। तो सभी से जुड़ते रहेंगे, सभी श्रोताओं की फरमाइश भी साथ साथ में करते रहेंगे
1: जी जी जी।
0: और है सर, वैसे मैं बहुत सालों से रेडियो सुनता हूँ।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, 2001 से जुड़ा हूँ। अभी 25 से 26 वर्ष हो चुके हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और देश भर के विभिन्न केंद्रों पर ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पत्रों के माध्यम से मेरी फरमाइश रहती है सर।
1: अच्छा।
0: और जितने भी अभी तक सम्मेलन हो चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पे श्रोता सम्मेलन
1: जी जी,
0: इस सभी सम्मेलन में मैं देश के हर अलग अलग जिले राज्य में पहुंचा हूँ सर, उसमें सम्मिलित हो चुका हूँ मैं अभी तक।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सिद्धार्थ जी आपने अपने बारे में। तो आशा करते हैं आगे से आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे।
0: बिल्कुल सर, जुड़ूंगा सर, और कार्यक्रम का नियमित रूप से श्रोता भी बनूंगा सर ईटानगर का।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थ जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: आज मुझे सर गोपी किशन फिल्म का गीत है, छतरी ना खोल बरसात में।
1: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: ये सर सुनूंगा मेरे मित्र से अर्चना गोंडा ने, मेरी लड़की है प्रसिद्ध जी, लड़का प्रणय
1: जी,
0: साथ में हमारे दो तीन दोस्त है, एक हीरामन शिंदे है, संजय कुमार गेडाम है और हिम्मतराव शुंगारे के साथ। सभी श्रोताओं को एक गीत सुना दीजिए।
1: ओके, तो सिद्धार्थ जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ सर, मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र।
0: ओके गंगाधर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: हाँ सर
0: जी, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो सर?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: जी मौसम कैसा है आपके वहाँ गंगाधर जी?
1: मौसम तो सर धूपकला वापस आ रहा है।
0: अच्छा, बारिश हुई नहीं अभी तक?
1: हुई पहले।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: तो अभी सुगा धूप निकल रहा है।
0: ओके, धूप है तो
1: बहुत परेशान है, क्योंकि सर जो जमीन में जो बीज डाले उसके पौधे बरबर निकले नहीं।
0: ओके, तो उसके लिए तो बारिश जरूरी है।
1: हाँ जरूरी
0: है। ओके, तो आशा करते हैं जल्दी बारिश हो।
1: जी, और सरकार से मांग रहे कि बीज हमको फ्री दो और दूसरा अच्छा, होने को।
0: जी जी जी, हाँ जी, फसल बर्बाद होंगे तो सरकार को तो मदद करनी चाहिए। जी जी जी,
1: फिर भी सरकार मदद कर रही सर।
0: ओके,
1: और सर आपके पास बारिश ही क्या सर ईटानगर में?
0: हाँ, ईटानगर अरुणाचल में तो बारिश ही हो रही है लगातार।
1: ऐसा क्या सर?
0: जी हाँ जी, यहाँ मौसम
1: आपको बहुत कुछ किस्मत ही है सर।
0: जी पहाड़ी इलाका है, ज्यादा बारिश होती है, अच्छा है।
1: हाँ,
0: जी जी जी,
1: क्योंकि ये बारिश के मौसम हर मौसम अच्छा रहने के वास्ते एक पौधे लगाना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, हर इंसान एक दो तो पौधे लगाना तो आगे चल के अपने को हर मौसम अच्छा मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ सर
0: जी, तो गंगाधर जी बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और आप कहिए, कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सोनी महिवाल फिल्म का बोल दे मीठे बोल सोनी, ये गाना सुना है सर?
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: साथ में मेरे मित्र है
0: जी,
1: हमारे तुकाराम जादव, हमारे गौतम जी राय बोले, भगवान सिंह जी, राजेंद्र गंगवार, सुरेश जादव पैठन के, धीरज रबारी, सुनील झा, दिलीप पाउजा, ये सभी दोस्त सर, आपको भी सुनना है, इनको भी सुनना है।
0: ओके, तो मुझे भी सुना
1: सर, सातारे के तनुश्री।
0: ओके जी जी जी, हाँ जी
1: हाँ।
0: ओके, तो गंगाधर जी मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, प्यार भरा नमस्कार सर जी।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: जी सर जी धन्यवाद
0: जी।
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करूं सर जी, बहुत 4 महीने बाद।
0: क्या बात है गौतम जी, आपने 4 महीने बाद भी हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 4 महीने बाद याद इसलिए किया सर जी कि ताकि हमारे जो नए साथी है, जो बहुत सारे श्रोता साथी है, वो ईटानगर पर फोन लगाना चाहते है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो उसका फोन लगना चाहिए इसलिए हम आराम करते सर जी।
0: जी जी जी बहुत ही अच्छी बात कही आपने गौतम जी, आपने कॉल नहीं किया तो हमारे साथ बहुत सारे नए श्रोता भी जुड़े हैं।
1: जी जी
0: जी
1: हम चाहते सर।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ईटानगर के सभी कार्यक्रम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते सर जी।
0: अच्छा क्या बात है। जी जी जी
1: साथ में अभी तक खेती किसानी करते हम, तो खेती किसानी पर आधारित बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं सर जी।
0: ओके जी जी जी
1: बहुत अच्छी जानकारी आती है, कीटनाशक की हो या दवाई की हो या कौन से खाद की हो या बीज वाई की, सब जानकारी मिलती है सर जी। प्रोग्राम बहुत अच्छे चलते हैं।
0: जी जी जी जी तो आप हमारे यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल।
0: तो गौतम जी कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: अब तो सर जी हमारे यहाँ तो अभी कपास की फसल की बुआई हो गई सर जी।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी हमारे यहाँ अभी बरसात में बुआई चलती है कपास की, बोलो तो सोयाबीन तुअर हरहर सब तरीके बुआई चलती है। अभी जरा मौसम बेमान हो गया हमारे यहाँ, पानी
0: अच्छा,
1: नहीं है सर जी।
0: ओके मौसम बेमान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर हम ये फिल्म लोफर का गाना सुनना चाहते हैं, आज मौसम बड़ा बेमान है।
0: ओके
1: और
0: जी जी जी
1: अभी अभी अभी हमारे फसल को बहुत जरूरी है सर जी बारिश
0: जरूरी है। जी जी जी
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, हम किसान है, किसान खेती करते करते भी आकर अभी मोबाइल ऐप हुआ तो मोबाइल ऐप पर

0: हम यूट्यूब में ब्लूटूथ में जबकि ब्लूटूथ में एक जगह पर रख के बहुत बड़े आवाज में कार्यक्रम सुनते हैं, मजदूर भी सुनाते सर जी।
1: अच्छा, क्या बात है जी। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छी तरह से मजदूर भी हंसते गाते मुस्कुराते प्रोग्राम सुनते
1: है। अच्छा,
0: फरमाइश जो हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है तो उनके दो चार साथियों के नाम, सबसे पहले तो हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी है और खास करके हमारे जो तुकाराम यादव जी है, योगेश जांगड़े जी है, भगवान सिंह परमार जी है, ये राजू यादव जी है, ये सभी साथी के लिए मेरा गाना डायरेक्ट कर दिया। और आशा करता हूँ आपकी इत्यानगर के दुआ से हमारे यहाँ बारिश हो जाए
1: जी। यही दुआ करते हैं, जल्दी बारिश हो। तो गौतम जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

बाजीगर फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज की ओर।

अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।

श्रोता कार्यक्रम भूले विश्व गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत आपने सुना आशा फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: डायनामिक परफॉर्मेंस, स्लीक डिजाइन, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कम्स विद अ माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर। स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल 50 इंजन एंड स्पेशियस इंटीरियर्स।
3: गेट अट्रैक्टिव ऑफर्स अप टू ₹67,500। ऑफर टिल स्टॉक लास्ट्स। विजिट योर नियरेस्ट मारुति डीलरशिप टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगे?
2: देखिए, सुधार तो रेलवे में एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई है उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाइश ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बांटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो। तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
2: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई जगह और चीजें बन गई है। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है,
1: बिल्कुल
2: तो आगे बात बने। अभी तब पेपर पे कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है, अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार वर्क नंबर सब दिखता है, ऐसे इसमें भी दिखेगा।
1: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है, तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
2: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं जो इंडस्ट्री है उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए, और जहां से शुरू होती है कहानी वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको हटा के

0: में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो। और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है, फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग
1: जी
0: के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है। जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
1: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक से बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश के साथ साथ उर्वरक भी भेजता है, अनाज भी है, अन्य वस्तुओं का परिवहन भी किया जाता है, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
0: कंटेनराइजेशन जहां जहां आया है वहां पे सफलता मिली है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपने सोच को थोड़ा बदला है, और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट, यह सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जिसको जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 100, 1/40, 1/45 का होता है,
1: जी
0: तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब तक है तब कर सकता है। मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो, तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है तो कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उसमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, जिससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स, सब में आपको फायदा दिखेगा।
1: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है, तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है, और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
0: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे, इंटरनल प्लेयर्स। अब ये दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है, और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है। ये सब चीज उन्होंने हटा दी है और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार, वंस यू आर इन, आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं।
1: जी
0: तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप
1: बिल्कुल
0: वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया है।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था, इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, ये जो बदलाव है इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि जब ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
0: रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, जब आप चेयर कार में जाए तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आप
1: जी
0: तो दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग आप भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल जानते ना हो। लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है,
1: जी
0: आप देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है, आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई
1: जी
0: तकलीफ की बात नहीं है।
1: जी
0: इसमें ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती है उनके नुकसान की बात कही जाती है, अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
0: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है, क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दोबारा सेल लगा लेते हैं और फिर

0: का ध्यान दिया जाएगा, कितने कंटेनर्स है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं। जो कंटेनर में सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत ही कम है, और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है
1: जी
0: कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
1: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा था कि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
0: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो, और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो।
1: जी
0: और सहूलियत सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो, और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो 52 रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर के अंदर।
1: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, तो रेल परियोजनाओं में जो काम करते हैं, खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी है, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है। तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा, और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
0: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम
1: जी
0: है अगर लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही है लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने को दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया जिसमें इन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
1: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए। तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
0: अभी देखिए शुरुआत हुई है, और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है। ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीतिगत सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है, एक
1: जी
0: बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही है, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
0: देखिए 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर जाएगी, सबसे ज्यादा जरूरी है ये फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी। भारतीय
1: जी
0: वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी, और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी है, और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो
1: जी
0: ये कोई नहीं चाहता कि टिकट इस टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है, और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें, और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत
1: जी
0: जबरदस्त काम हो रहा है, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी। धन्यवाद।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाताओं के सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित किया गया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ्रांस ने यूरोपीय एकता का सशक्त प्रदर्शन करते हुए बेस्टिल दिवस मनाया। और टेक्सास में फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत देश भर में 27 लाख कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन किया जा चुका है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 47 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई आर्थिक साझेदारी है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक है।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: फ्रांस में आज बेस्टिल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पेरिस में आयोजित वार्षिक सैन्य परेड में पूरे यूरोप की एकजुटता दिखाई दी, जिसमें कई यूरोपीय देशों के सैनिकों और विमानों ने हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने कार्यकाल के अंतिम बेस्टिल दिवस समारोह की मेजबानी की। समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सहित करीब 30 देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में